0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र

0: ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर, और जब ईश्वर से लगन लग जाती है तो बाकी सारे रिश्ते झूठ लगते हैं, व्यर्थ लगते हैं।

अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्ची आराधना है, फिर वो आराध्य चाहे जिस रूप में हो, राम के या श्याम के।

ईश्वर पर हम तभी विश्वास कर सकते हैं जब हमें खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही हैं।

0: ये थी आज की वंदना।
1: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details, log on to www.ddindia.com।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए 8700014242।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन बिंदु।
2: मैं मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता से इस कथा का निवेदन करूं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो।

0: जीवन में आपको अगर यह पंचभौतिक शरीर प्राप्त हुआ है तो संसार में आपको अगर आपके कारण कोई जानता है तब तो इस जीवन का महत्व है, अन्यथा आपके पिताजी के कारण कोई आपको जानता है, चाहे आपके परिवार के बल पौरुष के कारण लोग आपको जानते हैं, तो उसमें आपका कोई सामर्थ्य नहीं है। उसमें आपके द्वारा संसार में जन्म लेना एक तरीके से निरर्थक है। आपको हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से कि हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए जाने के लिए सारे सेनाओं ने अंगद जी से पूछा गया तो अंगद जी ने कहा, अंगद कहो जाओ मैं पारा जी संशय कज फिर तीन बारा। और नल नील सबसे पूछा गया, जामवन जी से पूछा गया, सबने अपना अपना सामर्थ्य निवेदित किया, परंतु किसी का ऐसा सामर्थ्य नहीं प्राप्त हुआ कि वह लंका जाकर के और माता जानकी जी का पता लगा करके वापस आ सके। उसी समय में एक कोने में बैठे हुए हनुमान जी महाराज सबके द्वारा लंका जाने का जाय है जहाँ तक जा सकते हैं इसका वर्णन सुन रहे थे, तब तक अचानक जामवन जी की नज़र उन पर पड़ी और जामवन जी ने कहा कि हनुमान तुम्हें पता है तुम कौन हो? हनुमान जी महाराज मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा मैं एक बंदर हूँ और मैं आपके साथ जानकी जी को ढूंढने के लिए आया हूँ, बस मुझे यह पता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं आपको कि जो आपके सामर्थ्य को और बलवती करे। और हनुमान जी के जीवन में शायद अगर जामवन जी न मिले होते तो हनुमान जी न होते। हनुमान जी महाराज से जामवन जी ने कहा तुम पवन के पुत्र हो, पवन तनय बल पवन समाना। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं पवन का पुत्र हूँ तो मेरे पिताजी की वैशिष्टता है, मैं तो कुछ हूँ नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि कवन सुकाज कठिन जग माही। तो हनुमान जी महाराज ने जामवन जी से कहा कि मेरी बड़ाई कर रहे हैं जामवन जी महाराज, जब मान बड़ाई प्राप्त होने लगे और आपको लगे कि जो आपको मान प्राप्त हो रहा है आपने उतना कुछ नहीं किया है तो और विनम्र हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं भगवत कृपा। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप इतनी बड़ाई कर रहे हो कि कवन सुकाज कठिन जग माही जो न हो ता तुम पाही। तो हनुमान जी महाराज फिर हाथ जोड़ करके बैठ गए। देखिए ये दोनों है, पहला पिताजी का सामर्थ्य के कारण मेरा सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ा, दूसरा बिना कुछ किए ही बड़ाई हो रहा है उसका भी असर नहीं हनुमान जी पे पड़ा। लेकिन जैसे ही जामुन जी ने कहा कि राम काज लगे तो अवतारा सुनते हूँ भयो पर्वताकारा, राम काज है क्या? राम का काज केवल दशरथ के पुत्र राम का कार्य पूर्ण कर लेना जानकी जी को ढूंढना नहीं है। राम का काज है कि आपके जीवन से आपने जी जहां पर आपने जन्म लिया है, जिस गांव में, जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में आपने जन्म लिया है, उन सारे अपने लोगों के बीच में कुछ ऐसा कार्य आप करें जिस राम काज लगे तो अवतारा सुनते हूँ भयों पर्वताकारा, कि जिस कार्य को करने के बाद आपको संतुष्टि मिल सके, जिस कार्य को करने के बाद आपके सामर्थ्य का वर्णन आपको न करना पड़े। हनुमान जी महाराज जो लंका से वापस आए सीधे जामुन जी से मिले और उन्होंने कहा कि मेरे सामर्थ्य के प्राप्ति में सबसे बड़े सहायक आप ही हो, तो जीवन में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसे हम गुरु माने, क्योंकि हमारे सामर्थ्य को बताने में कोई ना कोई सहायक बना अगर तो निश्चित है जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या, आप कर क्या सकते हैं। समस्या यह है कि हम समझ नहीं पाते हमें करना क्या है, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हमको करना क्या है। और जिस दिन हम यह समझ जाएंगे हमें करना क्या है, जैसे हनुमान जी को समझ में आया राम काज करना है तो पर्वताकार हो गए, वैसे ही अगर हमें कोई सदमार्ग पर कोई मिल गया आपके सामर्थ्य से आपको ज्ञान करा दिया तो निश्चित है आप भी हनुमान जी की तरह विश्वव्याप्त हो जाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

मानस गाना आप सुनेंगे हमारी आज की इसी सभा में कुछ ही देर बाद 6:40 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की इसी सभा में 9:50 पर, दोपहर 12:55 पर और शाम 8:15 पर आज के कलाकार होंगे अभिजीत। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में

11:05 पर आप सुनेंगे राम ज्ञान यादव और साथियों के गाए लोकगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दोपहर 12 बजे।

सेहत की बातें कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर आज आप सुनेंगे। भेंटवार्ता, बच्चों में कैंसर रोग कारण लक्षण एवं उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप सिंह, आपसे बातचीत करेंगे मनोज कुमार। खेती किसानी कार्यक्रम में दोपहर 1:50 पर सुनिएगा डॉक्टर राहुल कुमार सिंह से विनय कुमार की बातचीत, मोटे अनाजों की गुणवत्ता और खेती से लाभ। युवा श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5:05 पर। ग्राम जगत कार्यक्रम शाम 5:35 पर, इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर प्रतिभा सिंह की वार्ता, स्टेम सेल की उपयोगिता। धान में लगने वाले प्रमुख कीट व रोग, डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह से कृष्णचंद की बातचीत आप सुनेंगे खेतीबाड़ी कार्यक्रम में शाम 6:10 पर। और इसी कार्यक्रम में एक और वार्ता होगी डॉक्टर सतीश कुमार सिंह की, पशुओं के नवजात बच्चों की देखभाल। रंजना श्रीवास्तव के गाय लोकगीत आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में शाम 6:45 पर। शाम 7:00 देशमार कार्यक्रम, इसमें आज आप सुनिएगा डॉक्टर कमलेश राय की राय का कविता पाठ। प्रज्ञा श्रीवास्तव की कहानी दोषारोपण आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम में रात 8:00। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात 10:30 पर, इसमें आज आप सुनेंगे मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन। हमारे आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। इसी सभा में 7:31 पर पूर्वा सुहानी, 8:45 पर, 10:05 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, 11:30 पर और दोपहर 12:30 पर शाम 7:30 पर भी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और रात 10:00 भी आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। ये था हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषादराज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषादराज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे मानस गान, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास।
2: गाते गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: グループ。
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित

करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में

0: अभी आप सुन रहे थे मिली जुली आवाजों में देश गान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अल नीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में खरीफ सीजन की प्रगति और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित असर को देखते हुए की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। राज्यों के साथ मिलकर उन जिलों पर मानसून या देर से आए मानसून के असर का आकलन किया जाए जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। यह भी निर्देश दिया गया कि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं, साथ ही चारे के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएं और राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के लिए मंत्रालयों को राज्यों के साथ मिलकर आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था और आगामी श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। आज श्री योगी वाराणसी से ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से प्रदेश में काम करने वाले 12 लाख शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री चित्रकूट में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
2: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए की लागत की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है।
2: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है। सुरक्षा का माहौल जब खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा है कि मंदिर में चढ़ा

0: गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
1: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
0: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा कि वह SIT की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का कल 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 विद्यार्थियों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 विद्यार्थियों को डिग्री और 52 विद्यार्थियों को PhD अवार्ड भी प्रदान किए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
3: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
0: प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश और बूंदाबांदी का क्रम जारी है। लखनऊ, फर्रुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ सहित कई स्थानों पर कल बारिश दर्ज की गई। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवाओं के बीच बारिश के आसार बने हैं। पीलीभीत जिले में बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अलनीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक

0: समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजनीति का ये गीत। आवाजें थी आदेश श्रीवास्तव, शशि और रोसाली निकोलसन की। गीतकार समीर थे और संगीत दिया था आदेश श्रीवास्तव ने। अगले गीत आइए सुनते हैं फिल्म वेकअप सेठ से। आवाजें हैं कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की। गीतकार जावेद अख्तर और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
4: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाए, यही है हमारी पहचान।
3: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
4: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रेया घोषाल को अभी आप सुन रही थी फिल्म जब भी मेट में। गीतकार इरशाद कामिल थे और संगीत दिया था प्रीतम ने। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म गुरु से। आवाजें हैं ए आर रहमान, मुर्तजा खान, चिन्मयी और कादिर खान की। गीतकार गुलजार हैं और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

केके को अभी आप सुन रहे थे फिल्म ओम शांति ओम में। गीत जावेद अख्तर के थे और संगीत दिया था विशाल शेखर ने। अगले गीत आइए सुनते हैं केके की आवाज में फिल्म वो लम्हे से। गीतकार नीलेश मिश्रा हैं और संगीतकार प्रीतम।

0: इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम पूर्व सुहानी समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक

0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और अक्सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वही 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक पूर्वी राजस्थान गुजरात कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश, आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
7: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero tolerance

0: goals. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. Argentina was trailing by 2 goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Romero scoring the first goal at 79 minutes. The equalizer came through Messi in 83 minutes while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. Chirag Jha from Sports Desk.
1: In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 International at Trent Bridge in Nottingham last night, chasing a target of 202 runs set by England. India lost wickets in quick succession and were all out with a paltry score of 76 in 11.4 overs. For England, Josh Tung took four wickets, while Jofra Archer scalped three. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
2: Thank you, Abhishek. The wide-ranging talks in Jakarta between PM Modi and Indonesian President Prabowo Subianto is noticed prominently by the dailies Brahmos, Astra, EVMs in focus as India-Indonesia Inc. 14 packs headlines the Tribune. The Indian Express in an editorial piece writes the end of football superpower dump. The paper elaborates, world football's beloved giant Brazil is sinking in a World Cup where tiny nations like Cape Verde and Curaçao showed that they even can compete and where Germany and Holland went home early while Italy were a no-show. And finally, Ernest Hemingway's novel, The Sun Also Rises on Bull Runs Turn 100. Well, the Indian Express writes that Nobel laureates work places Spanish city Pamplona on the map for millions of people. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes a sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निमटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक्वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमेरिका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अलाक्वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निमटने के लिए फैसलाकुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। तफसील हमारे नामनिगार से।
4: दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में

0: 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और एन्जो फर्नांडेज ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके अर्जेंटीना की जीत की राह हमवार कर दी। मर्दों की क्रिकेट में नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर कल रात तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रन का निशान रखा था, लेकिन भारत की पूरी टीम 11 ओवर्स और चार गेंदों में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत इंडोनेशिया में शराकत दारी के सुनहरे बाब का आगाज। वज़ीर आज़म मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने की खबर को भी अखबारात ने पहले सफ़े पर पेश किया है। माहौलियाती तहफ़ के बगैर तरक्की सरासर बेमाना है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को इनकलाब और दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने केरलम के वायनाड में बड़े पैमाने पर चट्टान खिसकने के वाक़े में कम अज़ कम 3 अफराद के हलाक और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की खबर को अपने पहले सफ़े पर शाये किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद बैनुल अक़वामी खबरों की सुर्खियाँ इस तरह हैं, धमकियाँ जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का बयान, अमरीका का तुर्किया पर आई पाबंदियां खत्म करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक़वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एलनीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म दोस्ती में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगले गीत आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म संगम से। गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

संगम के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर और साथियों को फिल्म उपकार में। बोल गुलशन बावरा के हैं और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

मुकेश को अभी आप सुन रही थी फिल्म सरस्वती चंद में। गीतकार इंदिवर थी और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दो रास्ते से। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म गाइड के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम लखनऊ से रिले कर रहे हैं।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 9:15 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसका लाइव प्रसारण कानपुर नगर के HBTU ऑडिटोरियम नवाबगंज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ सांसद अकबरपुर देवेंद्र सिंह बोले मौजूद रहे। गौरतलब है कि योजना के माध्यम से प्रथम बार नियोजित कर्मचारियों एवं अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आभार जताया।
2: ये जो हमें भारत सरकार की वजह से पैसे मिले हैं PMPFO की वजह से, इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।
1: जनपद कानपुर नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA के लाल बहादुर शास्त्री कृषक सभागार में पिछले दिनों एक दिवसीय मंडल स्तरीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश कुमार सचान ने किया। कॉन्क्लेव में पहली बार पोल्ट्री उद्योग से जुड़े अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों एवं प्रमुख फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों, किसानों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ तकनीकी संवाद किया गया। इस दौरान आधुनिक कुक्कुट पालन उत्पादन विविध तथा उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों, पोल्ट्री उद्योग के प्रतिनिधियों एवं फार्मा कंपनियों के विशेषज्ञों ने मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों की रोकथाम, उन्नत दवाओं एवं टीकों का उपयोग, गुणवत्ता पूर्वक फीड सप्लीमेंट तथा आधुनिक प्रबंधन तकनीक पर विस्तृत जानकारी दिया, जिससे किसान वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पोल्ट्री कॉन्क्लेव को आवश्यक बताते हुए कहा,
3: पोल्ट्री उद्योग बढ़ाने की जरूरत है, इससे ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है। जितनी डिमांड है उतना उत्पादन हमारे यहाँ नहीं है। प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके, ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो आवश्यकता के अनुरूप डिमांड है आपूर्ति पर आत्मनिर्भर बनने का काम।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार

0: के कैबिनेट मंत्री कृषि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर कृषि कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप विकसित कृषि और खेती को लेकर देश में धरती बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। रासायनिक फर्टिलाइजर का कम प्रयोग किए जाने और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, गोमूत्र और कंपोस्ट खाद, बायो फर्टिलाइजर के उपयोग करने और हरी खाद खेतों में लगाने और दलहन तथा तिलहन की खेती करने के लिए किसानों को योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा,
1: इस साल सुपर एलिनो के प्रभाव की वजह से बरसात की कम संभावना है, इसलिए उन क्षेत्रों में जहां पर बरसात कम होती है या नहरों के साधन नहीं है, वहां पर दलहन और तिलहन की खेती को ही करना श्रेयस्कर होगा। हम लोग लगभग 5 लाख मिली के विभिन्न जनपदों के भीतर दलहन और तिलहन के निःशुल्क बीज विभाग के द्वारा वितरित किया जा रहा है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो अपना बीमा कवरेज भी अपने फसलों का करा लें, तो उससे उनको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगी और उनके नुकसान का 25% से लेकर 40% भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कराई जा सकती है।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा प्रमुख उपलब्धियों को लेकर सांसद कानपुर रमेश अवस्थी के साथ बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मीडिया संवाद का आयोजन बीजेपी महानगर कार्यालय में किया। इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर में किए गए विकास, जन कल्याण, स्वास्थ्य एवं जनहित कार्यों को साझा किया। पिछले दिनों कानपुर नगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का सांसद कानपुर रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने परमठ पार्क में वृक्षारोपण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की। मीडिया संवाद के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सहित दुनिया भर के देश युद्ध से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध से असुरक्षा का वातावरण बना है, अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा नुकसान हुआ है और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर के देश इससे प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही कहा था, भारत शांति के पक्ष में है, भारत बुद्ध में विश्वास रखता है, युद्ध में नहीं। अनुराग ठाकुर ने शिप पर हुए हमले पर कहा कि भारत ने संज्ञान लेते हुए अमेरिकी दूतावास से कड़े शब्दों में हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के हमले स्वीकार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्दी भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिससे देश में खेलों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। खेलो इंडिया, फिट इंडिया को बल दिया जा रहा है। बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ किया गया है।
2: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
3: मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 11 जुलाई को होगा। इस आयोजन में 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। जिला प्रशासन इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के साथ निरीक्षण कर श्री देवी मेला क्षेत्र को सामूहिक विवाह आयोजन के लिए चुना और मौके पर अधिकारियों को भव्य आयोजन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह में लगभग 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर लगभग 4 से 5 हजार व्यक्तियों के उपस्थित रहने की संभावना है। संख्या के अनुसार वर्षा को ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं कार्यक्रम से पूर्व सुनिश्चित की जाएं। मैनपुरी जिले में आजकल मिशन समाधान चर्चा का विषय है। मिशन समाधान के दौरान जहां हजारों बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई, वहीं उन गरीबों के चेहरों पर खुशियां देखने को मिली जिनके जीने का सहारा छीन लिया गया था। कई मामले ऐसे देखने को मिले जहां 48 साल बाद जमीन कब्जा मुक्त हुई और जमीन पर वास्तविक हकदार को कब्जा दिलाया गया। कुरावली ब्लॉक का यह मामला बहुत ही सुर्खियों में रहा। मिशन समाधान के अंतर्गत ही जिलाधिकारी ने तहसील भोगांव के ग्राम उस्मानपुर में लगभग 17 वर्ष पुराने भूमि विवाद का भी मौके पर पहुंचकर निस्तारण कराया। शिकायतकर्ता चेतराम वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्वयं करीब 1 घंटा 30 मिनट तक खेत की मेड़ पर खड़े रहकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में राजस्व टीम से भूमि की विधिवत पैमाइश कराई। सभी अभिलेखों एवं सीमांकन का परीक्षण कराने के उपरांत मौके पर ही विवाद का समाधान कराया, जिससे वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया और शिकायतकर्ता को न्याय मिल सका। मैनपुरी शहर के 20,000 बिजली उपभोक्ताओं का लोड बिजली विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया। उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा मैसेज देकर यह सूचना दी गई है। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने कहा कि उपभोग के अनुसार लोड बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर लोड बढ़ने से किसी उपभोक्ता को शिकायत है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, बिजली विभाग उसका समाधान कराएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि

0: त्रिपाठी ने जिला विद्यालय यान परिवहन समिति की बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी विद्यालय वाहन बिना फिटनेस के संचालित न हो। सभी विद्यालय वाहनों से सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ न हो। उन्होंने जानकारी करने पर पाया कि जनपद के 252 विद्यालयों के नाम 745 वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से 240 वाहनों में फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि कमियां हैं, जिस पर उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऐसे स्कूली वाहनों की फिटनेस सहित अन्य कमियों को दूर कराएं। यदि विभाग में किसी के द्वारा स्कूली बसों के स्वामियों का शोषण किया गया तो दोषियों को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी अनफिट वाहन छात्रों को लाने ले जाने का कार्य न करे। यदि किसी भी विद्यालय में अनफिट वाहनों के संचालन के कारण कोई दुर्घटना घटित हुई तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी तय कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। स्कूली वाहनों की फिटनेस के संबंध में जारी निर्देशों पर सुदिति ग्लोबल एकेडमी के निदेशक लव मोहन ने बताया कि स्कूली वाहनों की फिटनेस पर संस्था द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरती जाती है। स्कूल बस की गति के लिए भी नियम निर्धारित है। एआरटीओ सिद्धार्थ यादव ने कहा कि अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अनफिट पाए जाने वाले वाहनों के स्कूल संचालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। स्कूल संचालकों को बता दिया गया है कि विद्यालय के वाहन में कोई कमी पाए जाने पर स्कूल संचालक जिम्मेदार होंगे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान इस संदेश के बाद।
4: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
5: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
6: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
5: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
6: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
5: गाने के बोल,
6: गीतकार
5: और संगीतकार,
6: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
5: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
6: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
5: गाते
6: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
5: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
7: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
8: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: 30 मिनट हुए हैं और अब पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज की पेशकश आकाशवाणी गोरखपुर के मरकज से, आइए सुनते हैं।
1: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के प्रोग्राम में पहले आप समाअत फरमाएंगे दिलावर फिगार के ऊपर एक मुख्तसर तकरीर, इसके बाद आप समाअत फरमाएंगे डॉक्टर मुशीर अहमद से उनका एक मकाला शहरियार का तख्लीकी सफर, और कलाम शायर के तहत हमारी आज के शायर हैं जनाब अंजुम इरफानी। सामईन, आज उर्दू के मुमताज़ तंजिया मिजाहिया शायर दिलावर फिगार का योम पैदाइश है, इस मौके पर समात फरमाइए एक खसूसी तहरीर शहनशाह ज़राफ़त दिलावर फिगार। जूते के इंतखाब में मस्जिद में जब गए वो जूतियां पड़ी कि खुदा याद आ गया, आके बज़्मे शेर में शर्ते वफा पूरी तो कर, जितना खाना खा गया है इतनी मजदूरी तो कर, वहां जो लोग अनाड़ी हैं वक्त काटते हैं, यहां भी कुछ मुतशायर दिमाग चाटते हैं, सयाह जुल्फ को जो बन सवर के देखते हैं, सफेद बाल कहां अपने सर के देखते हैं। ये अशआर हैं उस तंजिया और मिजाहिया शायर के जिसे पैरोडी का बादशाह कहा जाता है, मेरी मुराद है जनाब दिलावर फिगार से। आज उनका यौम पैदाइश है। मिजाहिया शायरी की दुनिया में उन्हें शहनशाह ज़राफ़त और अकबर सानी के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। उर्दू की मिजाहिया शायरी के हर दौर में वो एक अजीम शायर रहे। दिलावर फिगार मारूफ गजलों और नज्मों की पैरोडी इस शानदार तरीके से करते हैं कि उन्हें पैरोडी का बादशाह कहा जाता है। दिलावर फेगार का पूरा नाम दिलावर हुसैन था। वो 8 जुलाई सन 1929 को भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के कस्बा बदायूं में पैदा हुए थे। दिलावर ने शेरगोई का आगाज तकरीबन 14 बरस की उम्र में सन 1942 के आसपास किया। दिलावर फेगार ने अपनी इब्तदाई तालीम बदायूं में हासिल की थी। मजीद तालीम के लिए वो आगरा गए, जहां उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से पहले एमए उर्दू, फिर एमए अंग्रेजी और बाद अज़ां

ही से रात दिन शल हुए आजाद तो फिर घर को कफस होना ही था। शल हुए आजाद तो फिर घर को कफस होना ही था। गिन के दे रखा है सांसों का जखीरा उसने जब, गिन के दे रखा है सांसों का जखीरा उसने जब, फिर इसे हर हाल में कम हर नफस होना ही था। फिर इसे हर हाल में कम हर नफस होना ही था। हर कदम था राह से बेराह हो जाने का डर, हर कदम था राह से बेराह हो जाने का डर। चश्मे वा को धुंध में भी दूर रस होना ही था। चश्मे वा को धुंध में भी दूर रस होना ही था। चल रहे थे दरमियां एक फासला रखे हुए, चल रहे थे दरमियां एक फासला रखे हुए। भीड़ में आते ही जिस्मों को तो मस होना ही था। भीड़ में आते ही जिस्मों को तो मस होना ही था। और की तो थी जी जान से आराइफे सहने चमन, की तो थी जी जान से आराइफे सहने चमन। गुंचो गुल को खिजा में खारो खस होना ही था। गुंचो गुल को खिजा में खारो खस होना ही था। छोड़कर जहराब अगर शहदाब की है जुस्तजू, छोड़कर जहराब अगर शहदाब की है जुस्तजू। गुल बगुल फिरते हुए मिसले मगस होना ही था। गुल बगुल फिरते हुए मिसले मगस मगस होना ही था। टूट कर पलकों से अंजुम जो सितारा भी गिरा, टूट कर पलकों से अंजुम जो सितारा भी गिरा। फिर किसी माबद का उसको तो कलस होना ही था। फिर किसी माबद का उसको तो कलस होना ही था। इस खराबे से गुजरते वक्त बस होना ही था। हो बगूले हम सफर तो पेशो पस होना ही था। दूसरी गजल का मतलब अर्ज है कि जो हर घड़ी का है मामूल जिक्र क्या करते, जो हर घड़ी का है मामूल जिक्र क्या करते। सफर कदम से बंधा है तो खिज्र क्या करते। सफर कदम से बंधा है तो खिज्र क्या करते। असुपुर्द कर दिए उसके जब अपने सारे उमूर, सुपुर्द कर दिए उसके जब अपने सारे उमूर। किसी भी नफ़ो खसारे की फिक्र क्या करते। किसी भी नफ़ो खसारे की फिक्र क्या करते। सरे नियाज झुकाना ही पड़ गया सबको, सरे नियाज झुकाना ही पड़ गया सबको। ये आफरीदगां इजहारे किब्र क्या करते। ये आफरीदगां इजहारे किब्र क्या करते। जब और खिंच न सका तूले इंतजार उनसे, जब और खिंच न सका तूले इंतजार उनसे। हिसार तोड़ चले अहले हिजर क्या करते। हिसार तोड़ चले अहले हिजर क्या करते। वो हब्स है कि घुटा जाए दम ही सीने में, वो हब्स है कि घुटा जाए दम ही सीने में। किसी ने भेजे हैं तोहफे में इत्र क्या करते। किसी ने भेजे हैं तोहफे में इत्र क्या करते। उसी की खोज का दावा है जब सभी को यहाँ, उसी की खोज का दावा है जब सभी को यहाँ। फिर इम्तियाज मुसलमानो गिब्र क्या करते। फिर इम्तियाज मुसलमानो गिब्र क्या करते। शरीके जश्न हुआ जब न वो दिला के यकीन, शरीके जश्न हुआ जब न वो दिला के यकीन। सो इंतजार पसे ईद फित्र क्या करते। सो इंतजार पसे ईद फित्र क्या करते। वहां सिरे से जुलैखा नजर न था कोई, वहां सिरे से
जुलेखा

0: नजर न था कोई, तो जाके हम सरे बाजारे मिस्र क्या करते, तो जाके हम सरे बाजारे मिस्र क्या करते। और पए तवाफ जहां हैं हजारहा सूरज, पए तवाफ जहां हैं हजारहा सूरज, हम उस हुजूम में अंजुम थे सिफर क्या करते, हम उस हुजूम में अंजुम थे सिफर क्या करते, सफर कदम से बंधा है तो खिज्र क्या करते।
1: जनाब अंजुम इरफानी के नशार के साथ ही सामईन आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार होंगे अभिजीत। पहले ये संदेश।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
6: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
7: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
8: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बीफार्मा, एमफार्मा और डीफार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा, गोरखपुर।
5: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
6: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
5: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
6: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
7: आकाशवाणी गोरखपुर से सुगम संगीत में इस समय आप सुन रहे हैं अभिजीत को।

0: इसके साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज के कलाकार थे अभिजीत, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है।

0: प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 77,816 पर, जबकि निफ्टी 139 अंक लुढ़ककर 24,260 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। श्रोताओं, मन पसंद संगीत सुकून तो देता ही है, साथ ही साथ कुछ यादें भी ताजा कर जाता है, और कुछ ऐसे ही गीतों की आपकी फरमाइशें इस कार्यक्रम गाते गुनगुनाते के सफर को और भी स्पेशल बनाती है। तो आज की पहली फरमाइश है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार ने सुनना चाहा है। ये गीत फिल्म है सावन को आने दो। स्वर है जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा का। गीतकार गौहर कानपुरी और संगीतकार हैं राजकमल।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गाइड से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत शैलेंद्र के हैं और संगीतकार हैं एसटी बर्मन। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने अशोक नगर गोरखपुर से सुशील श्रीवास्तव, मोनिका श्रीवास्तव, शौर्य और यश। ग्राम बिरखेरा से, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर अगला गीत फिल्म गाइड से।

श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमें ना चाहते हुए भी गुनगुनाने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही है अगला गीत फिल्म दोस्ताना से। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ है, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहे आप सबने, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरोनिसा शविस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म दोस्ताना का ये गीत।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म कटी पतंग से किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। हुमायूंपुर गोरखपुर से सुशील श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, अल्पना श्रीवास्तव, प्रणीत सक्षम, अनुपम और शक्ति ने। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म कटी पतंग का ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश है पद्मा ठाकिर नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। आपने फरमाइश की है फिल्म शोले से ये गीत सुनना चाहा है। किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ में, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपसे है, आपकी फरमाइशों से है, तो भेजते रहिए अपनी फरमाइशें और सुनते रहिए अपनी पसंद के गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म उपकार से, मन्ना डे की आवाज में। गीतकार कमर जलालाबादी हैं और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। देवरिया से अनिल अग्रवाल, वीना अग्रवाल, मोहित, अन्नु और पीहू अग्रवाल। ग्राम गोपी खिरिया दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, अंजना पाल, हरिमोहन पाल, ज्योति बघेल और लक्ष्य बघेल। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म उपकार का ये गीत।

इस गीत के बाद कार्यक्रम की अगली फरमाइश है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शहनवाज, सरफराज, परवीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। आपने सुनना चाहा है आंखें फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत दिया है रवि ने।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
3: BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA D-Pharma B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
2: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
3: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।

आकाशवाणी गोरखपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। अगले गीत हमने लिया है फिल्म शोर से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, जब गीत और संगीत अपने मनपसंद का हो और मौसम के अनुरूप हो तो दिलों की दूरियां भी मिट जाती हैं। और आइए सुनते हैं ऐसा ही एक गीत फिल्म मेरा गांव मेरा देश से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर।

और अब कार्यक्रम के अंत में आपकी फरमाइश। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवासी मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर मोहम्मद साकी पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू, शंकर लाल गंगराडे, वनीता और मोहम्मद हसनैन पवार। आपने सुनना चाहा है फिल्म मोहरा का एक गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीतकार हैं बीजू शाह। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो श्रोताओं, अब चंदन लता को दीजिए अनुमति। आप अपनी फरमाइश अब गीत के बोल और अपने नाम के साथ हमें भेजते रहें और सुनते रहें कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रामानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रामानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रामानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि ये राहत अभियान दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता को दर्शाता है। भारत ने विनाशकारी दोहरे भूकंपों के बाद वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्व

भारत के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। केरला में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिलों में येलो अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे राम ज्ञान यादव व साथी से लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा,
7: बीटेक पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन शुरू हो गए हैं।
6: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
7: KIPM गीता गोरखपुर।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
4: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
5: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
4: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
5: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
4: गाने के बोल,
5: गीतकार
4: और संगीतकार,
5: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
4: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
5: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
4: गाते
5: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकरंग कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: पहले सुनते हैं रॉबी सेहगल की आवाज में फिल्म जब तक कह जान।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बीफार्मा एमफार्मा और डीफार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: अभी आप सुन रहे थे रॉबी सेरगिल की आवाज में फिल्म जब तक है जहां से। इस गीत को आइए सुनते हैं मोहित और सुनिधि की आवाज में, फिल्म शुद्ध देसी रोमांस।
5: Thank you.

0: गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, B-Pharma, M-Pharma और D-Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: आप सुन रहे थे मोहित और सुनिधि की आवाज़ में शुद्ध देसी रोमांस। इस गीत को आइए सुनते हैं,
1: रूप कुमार राठौर की आवाज़ में, तुमसा नहीं देखा से इस गीत को।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्लेम जूम की आवाज़ में फिल्म वो लम्हे से। इस गीत को आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म खूबसूरत से। अगला गीत, माफ़ करिएगा, रोक से अगला गीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
4: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
5: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
4: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
5: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
4: गाने के बोल,
5: गीतकार
4: और संगीतकार,
5: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
4: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
5: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
4: गाते
5: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

उदित नारायण के गाए फिल्म रोक के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
3: जी। विमलेश जी श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।

0: है।
1: जी
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराल।

0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं। और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे सादे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे सादे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं, वो वोट दे सकते हैं,

0: अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते। और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे गाने सुहाने। पहले सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज़ में फिल्म जब वे मिट से यह गीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में फिल्म जब वे मेट से ये गीत था। ये सुनते हैं अभिजीत के गाए फिल्म जोत से अगला गीत।

0: अरिजीत के गाए फिल्म एयरलिफ्ट के इस गीत के साथ ही इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। इससे अब से हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे सोनू निगम जी को।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

है तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा। टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में सुगम संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में चीफ मिनिस्टर टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज़ किया। ये स्कीम 12 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले और उनके ज़ेर किफालत अफराद को सेहत की हिफाजत फराहम करती है।
1: 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, अस्थायी या आंशिक विकलांगता की दिशा में 30 लाख से 80 लाख रुपए, 15 लाख से 40 लाख का इंश्योरेंस कवर और ईयर एक्सीडेंट की दिशा में 30 लाख से 80 लाख तक का इंश्योरेंस कवर और कार्मिक के साथ किसी अनहोनी की दिशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर प्रदान किया जाएगा।
0: उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 10 लाख असातिज़ा और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के समाजी तहफ़ के लिए एक मफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए। वज़ीर आला ने यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1.10 करोड़ तालिबे इल्म के वालदैन के खातों में DBT के ज़रिए 1200 रुपये फ़ी तालिबे इल्म मुंतकिल किए। इसके अलावा वज़ीर आला ने कौमी सतह पर मुंतखब होने वाले क्लीन एंड ग्रीन स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को भी एजाज से नवाजा। वज़ीर आला चित्रकूट और मानिकपुर असम्बली हलकों में 951 करोड़ रुपये के 124 अवामी बहबूद के मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपये से ज़्यादा के 111 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने काम करने के अंदाज से तरक्की को तेज़ किया है। वज़ीर आला ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपये के 99 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में चेक और सर्टिफिकेट तकसीम किए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर पूर्वांचल को तरक्की से जोड़ा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा की सदारत में कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग हुई। मीटिंग में खरीफ सीजन की पेशरफ्त और मईशत के दीगर शोबों पर अलनीनो के मुमकिन असरात की रोशनी में की गई तैयारियों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जाए और मानसून या ताखिर से होने वाले मानसून के असरात का अंदाज़ा रियासतों के साथ मिलकर उन अज़ला पर किया जाए जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसलाही इकदाम किए जा सकें। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हसास अज़ला में पीने के पानी के मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इसका मकसद 20,000 से ज़्यादा ज़राई कारोबारी अफराद और 20 लाख किसानों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए ज़राई तरक्की, खुशहाल गाँव और खुशहाल किसानों की ज़रूरत पर जोर दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेन करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि मंदिर में चढ़ावे के गबन के बावजूद यहां आने वाले अकीदतमंदों की तादाद और उनकी जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस मामले में इंसाफ किया जाएगा और मुजरिमों को सजा दी जाएगी। इस मामले में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साबिक जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने एक खत में कहा कि वो SIT की हतमी रिपोर्ट पेश करने के बाद अपने खिलाफ तमाम इल्जाम का जवाब देंगे। इस दरमियान राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के 3 मुलजमीन का पुलिस रिमांड शुरू हो गया है। पुलिस उन्हें जेल से पुलिस लाइन्स ले गई, वहां 3 मुलजमीन का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। इसके बाद पुलिस नकदी और जेवरात बरामद करने की कोशिश करेगी जिनकी उन्होंने शनाख्त की थी। रियासती वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल मिर्ज़ापुर में एक मल्टीपर्पज़ खाद, बीज और तौसीई मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को जदीद वसायल और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए मुसलसल काम कर रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म।

0: ما هو
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे सेहत की बातें। इसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय है बच्चों में कैंसर रोग का कारण व लक्षण एवं उपाय। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। भेंट करता है मनोज कुमार जी।
2: स्वागत है आप सभी का हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत की बातें में। आज हम बातें करेंगे बच्चों में कैंसर के बारे में, इसके लक्षण, कारण और इलाज। आज हमारे साथ है डॉक्टर कुलदीप सिंह, जो बाल कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
3: नमस्ते गोरखपुर।
2: डॉक्टर साहब, आज हमने जो विषय लिया है वो है बच्चों में होने वाले कैंसर के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे कि बच्चों में जो कैंसर होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है।
3: देखिए, बच्चों में जो कैंसर होता है वो बड़ों की तुलना में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि बच्चों में जो कैंसर होता है मुख्यतः उनके पैदाइशी कारण होते हैं
2: जी।
3: कुछ म्यूटेशंस होते हैं जो कि उस जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता तभी से होते हैं। कुछ जैसे मदर माँ अगर बच्चा पेट में है उसको रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया, कई बार कुछ रसायन हैं उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन हैं जो कि कैंसर करते हैं
2: जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे कि बच्चों का जो कैंसर है वो तुरंत ठीक होता है या उसकी जो इलाज की प्रक्रिया है वो भी लंबी चलती है।
3: बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कैंसर का मतलब अंत
2: जी।
3: आधुनिक चिकित्सा और कीमोथेरेपी की मदद से बच्चों में कैंसर के ठीक होने की दर लगभग 80% है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम सही समय पर अस्पताल पहुंचे
2: जी। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसका बच्चा पीड़ित है, किसी बीमारी से ग्रसित है, अगर आपके पास पहुंचे समय से तो उसका इलाज पूर्णतया हो
3: हाँ,
2: सकता है।
3: 70-80% बच्चे ठीक हो जाते हैं
2: जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और डॉक्टर साहब, बाल रोग कैंसर विभाग में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है?
3: हमारे यहाँ गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के कैंसर से के इलाज के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, बच्चों के सर्जन हैं, पूरी एक टीम है जो कि बच्चों के कैंसर के हर एक स्तर पे उसका सहायता करती है
2: जी।
3: और ये सारी सुविधाएं निशुल्क हैं।
2: निशुल्क, बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर मेडिकल कॉलेज पहुंचता है, इसके लिए कोई कार्ड की आवश्यकता है?
3: नहीं, किस तरह मरीज कोई भी हो, किसी भी तरीके के कार्ड की जरूरत नहीं है, बस वो आ जाए
2: जी।
3: क्योंकि सरकार के द्वारा हर तरह के कैंसर की जो दवाएं हैं वो मुफ्त दी जा रही हैं, जांचें मुफ्त हैं
2: जी।
3: तो बस केवल मरीज समय पे आ जाए।
2: तो श्रोताओं, आप सुन रहे होंगे, अगर आप समय पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और किसी विशेष कार्ड की जरूरत नहीं है, आप विभाग पहुंचे, डॉक्टर साहब वहां मौजूद हैं, इलाज के दौरान सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध है और सारी जो इलाज की प्रक्रिया है वो भी मुफ्त है। डॉक्टर साहब, अब बातें करते कुछ भ्रांतियां होती हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये बीमारी छुआछूत की है, तो क्या ऐसा है?
3: बिल्कुल नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों का कैंसर या रक्त विकार जैसे थैलेसीमिया या हेमोफीलिया संक्रमण नहीं है
2: जी।
3: यह ना तो खेलने के साथ फैलता है, ना ही साथ खाना खाने से फैलता
2: जी।
3: है इस ऐसे बच्चों को प्यार और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि लंबा इलाज, डर, इन सब की वजह से बच्चे मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित होते हैं
2: जी।
3: तो अगर हम इनको प्यार दें, दुलार दें, और ऐसा देखा भी गया है और कई रिसर्च ऐसे हुए हैं जिसमें देखा गया अगर हम परिवार का साथ अच्छा मिलता है, बच्चों को इस तरह का माहौल मिलता है, तो वो कीमोथेरेपी को बहुत ही अच्छी तरीके से सह पाते हैं
2: जी। और अगर समाज में उन बच्चों को बहिष्कार ना करें,
3: नहीं करना,
2: और बाकी बच्चों के साथ वो मिल के भी रहें, तो उनका मनोबल भी गिरेगा नहीं और बढ़ेगा, और वो जो इलाज चल रहा है उसको अच्छी तरह से लेंगे भी जी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में बातें तो जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं आपकी पसंद का कोई गीत।
3: तो वैसे तो ये बहुत कठिन काम आपने मुझसे पूछ लिया है, फिर भी कुछ गाने हैं
2: जी,
3: इसमें से मैं एक गाना सुनना चाहूंगा, पल पल दिल के पास, वो मेरे भी दिल के बहुत पास है
2: जी। डॉक्टर साहब, आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: इस गीत के बाद डॉक्टर साहब हम कार्यक्रम में वापस लौटते हैं, और इस कार्यक्रम में पहले हम बातें कर रहे थे कुछ भ्रांतियों के बारे में, और अब हम बातें करिए कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी कितना उसमें सहनीय दर्द होता है?
1: कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कीमोथेरेपी से कोई दर्द नहीं होता है
0: जी।
1: दर्द जो होता है वो इंजेक्शन लगाने के दौरान जो कैनुला डालते हैं बस इसी का दर्द होता है, और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सह लेते हैं। कुछ चीज़ें होती जैसे बाल का झड़ जाना होता है, थोड़ा सावलापन आ जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कीमोथेरेपी की ख़त्म होने के बाद 100% पूर्णतः नॉर्मल हो जाता है। बच्चा पूरे बाल आ जाते हैं, बच्चे रंग अच्छा हो जाता है, नाखून आ जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या मोबाइल फ़ोन या मोबाइल टावर हैं अगर आसपास आपके एरिया में, उनसे भी कैंसर का खतरा रहता है?
1: हाँ, ये एक भ्रांति है लोगों की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चों को कैंसर हो गया तो हम मोबाइल टावर के आसपास रहते हैं, या इन सब चीज़ों से कैंसर नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों को हम लोग हमेशा एडवाइज़ करते हैं कि मोबाइल कम से कम देखें।
0: और लोग जिनके बच्चे पीड़ित होते हैं कैंसर से, तो लोग ये भी समझते हैं कि ये माँ बाप के पुराने जन्मों का कुछ वो रहता है, तो इस भ्रांति के बारे में आप क्या बोलना
1: नहीं
0: चाहेंगे?
1: नहीं किसी को भी ये नहीं सोचना है, ठीक है, कि ये माँ बाप के वो है, किस्मत है, वो किसी बच्चों को हो गया,
0: जी
1: लेकिन इसका इलाज है, डट के मुकाबला करें और मरीज ठीक होता है।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे बच्चे का इलाज हो रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है उसको, तो उस दौरान उसके पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी पढ़ाई रुक भी जाती है, तो बच्चे किस तरह से अपने को पढ़ाई से जोड़े रहते हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी मेरा एक बच्चा जो कीमो ले रहा है और हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहा है,
0: जी
1: आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक बच्चा हम उसको ताकत दे रहे हैं कैंसर लड़ने की, वो अपनी ज़िंदगी संवार रहा है।
0: जी जी
1: उसका
0: बिल्कुल
1: वो भी पेपर है और कीमो के दौरान, इस दौरान कीमो लेगा और जाके पेपर देगा।
0: वाह, तो बहुत ही अच्छी, मतलब एक मोटिवेशनल बात है कि कैंसर है का इलाज तो चल रहा है लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं
1: नहीं रुक रही
0: रुकेगी,
1: है,
0: उसका इलाज सिर्फ
1: साथ
0: साथ
1: साथ
0: में
1: ले सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते हैं,
1: हाँ,
0: उसमें कोई
1: कि
0: रुकावट नहीं
1: कोई रुकावट
0: आएगी।
1: नहीं आती है, ना ही बच्चा कोई दिमागी रूप से कमज़ोर होता है। ये सब भ्रांतियाँ हैं कि मेरे बच्चे को कैंसर हो गया तो दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाएगा। बस अगर वो कमज़ोर होगा तो खाली इस बात से कि जब हम उसके साथ भेदभाव करने की कोशिश करते हैं, तब
0: जी जी बिल्कुल।
1: भेदभाव ना करें, उसका हौसला बढ़ाएं और बच्चा आगे जाएगा।
0: तो और एक बात और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, कैंसर के इलाज के बाद अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या वो एक सामान्य जीवन जी सकता है?
1: हमारे यहाँ जो पहली लड़की, पहली क्या, एक शुरुआती दौर में जो लड़की आई थी, अब उसकी शादी होने की बात चल रही है,
0: जी
1: तो हमें लगता है कि इस सवाल का जवाब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती
0: जी
1: कि अब वो शादी करने लायक हो, कि
0: जी
1: बातें चल रही हैं उसके घर में।
0: बिल्कुल, मतलब आप एक सामान्य जीवन
1: जीवन
0: भी जी
1: जी सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं। तो श्रोताओं, अगर घर में या किसी को कैंसर का रोग है और इलाज हो चुका है, तो यह ना समझे कि वो ताउम्र उसके साथ रहेगा, आप एक नॉर्मल जीवन भी जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि इसमें भी आप अपने पसंद का गीत हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, बड़े अच्छे लगते हैं ये गाना।
0: जी डॉक्टर साहब, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या?

0: डॉक्टर साहब, अब हम बातें करेंगे कि परिवार में अगर किसी को कैंसर होता है तो क्या बच्चे को भी होगा? अगर किसी बड़े को अगर कैंसर हुआ हो तो बच्चे को भी होना या अनुवांशिक हेरिडिटरी है या अनुवांशिक रूप से उसको भी हो जाएगा, ऐसा कुछ है?
1: ऐसा नहीं है, बड़ों का कैंसर और बच्चों का कैंसर एकदम भिन्न है। इस तरह की किसी भी स्टडी में इस तरह का कोई फाइंडिंग नहीं मिला है जिसमें कि घर में किसी बड़े को हुआ हो, बच्चे को हो गया हो।
0: जी
1: हाँ, ये जरूर है कि कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जिसमें कि चांसेस ज़्यादा रहते। ये ऐसा कोई संबंध नहीं है कि बड़े को है तो छोटे को हो जाएगा, बच्चे को है दूसरे बच्चे को हो जाएगा, इस तरह कोई संबंध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। अगर
0: कैंसर,
1: होता भी है तो वो
0: जी
1: एक्सीडेंटल है।
0: जी मतलब जेनेटिक्स, जीन
1: हाँ,
0: में
1: जीन
0: ट्रांसफर
1: में
0: होने का
1: हाँ कुछ
0: चांसेस?
1: चांस नहीं है। माँ को है बच्चे को हो जाएगा ऐसा नहीं है,
0: जी
1: पापा को था
0: जी
1: बच्चे को हो जाएगा ऐसा ऐसा अभी तक किसी स्टडी में नहीं आया है।
0: लेकिन हम जानना चाहेंगे, क्या उस परिवार के लोगों को अधिक सावधानियां बरतनी होती हैं जिनके घर में कैंसर से कोई पीड़ित रहा हो?
1: नहीं, इस तरह की किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं होती है। और कोई ये वही अभी जिसके इसके पहले हम लोगों ने बात की कि ये कोई साथ में रहने और खाने की बीमारी, इससे
0: जी
1: फैलने
0: जी
1: वाली
0: जी
1: बीमारी
0: बिल्कुल
1: नहीं है,
0: बिल्कुल
1: तो ऐसा कोई डर नहीं है।
0: जी। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है, अगर इलाज के दौरान कोई बच्चा मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो हमने वार्ड बना रखा है उसमें हमने बच्चों के लिए प्ले वे एरिया है,
0: जी
1: उसमें एक टीवी लगी हुई है ताकि इस दौरान बच्चे का जो स्ट्रेस होता है, जो जो थोड़ा सा कभी कभी कुछ बच्चे वो लगता करे मुझे क्या हो गया
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: उससे उबर पाते हैं। बहुत वहाँ पढ़ने की, खेलने की, टीवी देखने की, मोटिवेशनल बातें हम लोग खुद हफ्ते में एक बार जाके उनको
0: जी
1: मोटिवेट करते हैं, दूसरों को कहानियाँ सुनाते हैं। ये
0: बीआरडी में
1: समस्या
0: मतलब उस तरह का माहौल
1: माहौल
0: बना है
1: बना हुआ
0: कि
1: है।
0: बच्चे मतलब मेंटली परेशान, स्ट्रेसफुल उनका जीवन
1: हाँ,
0: आ रहा है,
1: ना
0: वो
1: रहे।
0: ये ना सोचे कि हम बिल्कुल अलग है या किसी
1: हाँ
0: रोग से
1: जी,
0: पीड़ित हैं।
1: कभी कुछ बच्चे तो इतने खुश होते हैं घर ही नहीं जाना चाहते हैं कि मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है।
0: जी, तो बहुत अच्छी बात है, और अस्पताल ने इस तरह की सुविधाएं कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए उपलब्ध कराया है। डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में कैंसर आम होता है या आम बीमारी है या?
1: नहीं, कैंसर बच्चों में तो कैंसर बहुत रेयर बीमारी है, बहुत आम आम बीमारी नहीं है ये।
0: जी डॉक्टर साहब, इसी में एक प्रश्न है मेरा कि अगर

0: जैसे आपने बताया कि कोई आम बीमारी नहीं है ये, लेकिन अगर होता भी है तो ज्यादातर बच्चों में किस तरह का कैंसर आपके समक्ष मतलब देखने
1: आते
0: को
1: हैं।
0: मिला है?
1: देखिए बच्चों में तो कई तरह कैंसर होते हैं, लेकिन उसमें से जो रक्त कैंसर, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ये रक्त कैंसर का ही एक दूसरा प्रकार होता है लिम्फोमा,
0: जी,
1: ये सबसे तक कॉमन है
0: लिम्फोमा।
1: लिम्फोमा। वैसे बच्चों में दिमागी कैंसर, हड्डियों का कैंसर, फेफड़े का, लीवर का, लेकिन ये सब कैंसर बहुत कम होते
0: कम
1: हैं,
0: होते
1: मुख्यतः
0: हैं।
1: जो है रक्त कैंसर होता है।
0: तो रक्त कैंसर के इलाज के लिए बीआरडी में किस तरह
1: सारी
0: का?
1: सुविधा अवेलेबल है, कीमो, केवल इसमें कीमो ही चलता है, तो कीमो 100% हम लोग फ्री देते हैं,
0: जी
1: पूरी व्यवस्था है।
0: जी डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, लेकिन पड़ाव को ख़त्म करने से पहले हमारी गुजारिश है कि आप एक और गीत हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: दो पत्ती मूवी का एक गाना है रांझना, ये काफ़ी चर्चित गाना है, प्रचलित गाना है,
0: जी
1: तो ये सुनना पसंद।
0: जी डॉक्टर साहब, आइए पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: डॉक्टर साहब, गीत से पहले हम बातें कर रहे थे कि किस तरह के कौन सी कैंसर सबसे कॉमन है बच्चों में। अब हम बातें करेंगे कि बच्चा क्या बाल कैंसर ठीक हो सकता है।
1: अब इसके इसके पहले भी हमने बात की
0: जी
1: कि
0: जी
1: 70-80% बच्चे
0: बिल्कुल।
1: ठीक हो सकते हैं, हो जाते हैं।
0: बाल कैंसर का इलाज क्या क्या है, इसकी
1: हाँ,
0: प्रक्रिया क्या
1: प्रक्रिया
0: क्या
1: क्या
0: है,
1: है,
0: इसको
1: यस
0: आप थोड़ा विस्तार से हमारे
1: यस।
0: श्रोताओं के
1: देखिए,
0: लिए बताएं।
1: जब जब पहले हम इस लक्षण की बात कर लें
0: जी
1: कि
0: जी
1: क्या क्या
0: जी क्या
1: लक्षण होते
0: लक्षण
1: हैं
0: होते
1: जब
0: हैं।
1: हम सोचना चाहिए कि कैंसर हो सकता है क्या।
0: जी
1: तो अगर एक बच्चे का बुखार आ रहा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार बुखार आ रहा है, शरीर में कहीं गांठें हैं,
0: जी
1: कोई छोटी गांठ थी पहले, अब वो बड़ी हो रही है, शरीर में खून की कमी,
0: जी
1: या
0: जी
1: जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसको एनीमिया हो गया है,
0: एनीमिया
1: ठीक
0: जी।
1: है, जोड़ों में हड्डियों में दर्द, अगर कोई बच्चा रात में उठ के और अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरा पैर दबाइए और
0: जी
1: मेरे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। वैसे अगर दिमाग में हैं तो झटके आ सकते हैं, ठीक है, बेहोशी हो सकती है,
0: जी
1: लेकिन जो मुख्यतः लक्षण होते हैं, जो मुख्य मुख्य कैंसर हैं, उनमें यही होता है, बुखार आना, शरीर में खून की कमी होना, हड्डियों में दर्द होना, ठीक है,
0: जी
1: ये
0: जी
1: है।
0: डॉक्टर साहब,
1: तो
0: आपने अगर बच्चा अगर रात को उठ के बोलता है कि पैर दबा दीजिए
1: दबा
0: या दर्द हो
1: दीजिए,
0: रहा है, तो ये आमतः कब कब मतलब पेरेंट्स को सतर्क हो जाना चाहिए,
1: हाँ,
0: किस लेवल पे आके उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि हो सकता है ये कैंसर का
1: बिल्कुल,
0: ही
1: एकदम
0: रूप ले रहा हो।
1: एकदम एकदम। और आपने सही बात पूछी, वैसे तो पैरों में दर्द होना कोई बड़ी बात नहीं है,
0: जी
1: बच्चे
0: जी
1: खेलते कूदते रहते होता ही रहता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को लगातार बुखार आ रहा है, हल्का हल्का बुखार है, माँ बाप को बच्चा पीला दिख रहा है,
0: जी
1: खून कमी दिख रही है और उसका वजन कम हो रहा है,
0: जी जी
1: तो माँ बाप को देर नहीं करना चाहिए, ये लक्षण हो सकते हैं।
0: हो सकता जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो श्रोताओं, आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर किसी बच्चे को तेज बुखार आ रहा हो, वो बार बार पैर दर्द या शरीर में दर्द का कंप्लेन कर रहा हो और उसे भूख नहीं लग रहा हो, तो आप सतर्क
1: पीलापन,
0: हो, जब उसके शरीर में पीलापन आ
1: खून
0: जाए,
1: कमी दिख रही हो,
0: खून की कमी दिख रही हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिले, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या सबसे नज़दीकी मेडिकल कॉलेज पे जाएं और इसका इलाज वहाँ पे उपलब्ध है और आप डॉक्टर की सलाह से इसका इलाज भी करवा सकते हैं।
1: वहाँ BRD मेडिकल कॉलेज में अगर कभी भी आते हैं, वैसे तो मेरी OPD बृहस्पतिवार को होती है,
0: जी
1: लेकिन आप किसी भी दिन आए मेरा नाम पूछते हुए कि डॉक्टर साहब को दिखाना है, तो कहीं ना कहीं मैं डिपार्टमेंट में मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो 5वां फ्लोर, 5वां तल, 500 बिल्डिंग का कैंसर का ही वार्ड बनाया गया है,
0: जी
1: तो सीधे 5वें फ्लोर पे आके वहाँ किसी भी स्टाफ से पूछ लेंगे कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है, तो मुलाकात हो जाएगी।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे श्रोताओं के लिए। जो श्रोता सुन रहे होंगे, आशा है कि आपके पास पहुंचेंगे और अपने बच्चों के इलाज के लिए आपसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और बच्चों के कैंसर के बारे में इतनी विस्तार में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं आखिर में यही बात कहूँगा कि कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से लड़ें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सेहत की बातें, इसमें आपने सुना भेंट वार्ता, विषय था बच्चों में कैंसर रोग का कारण, लक्षण व उपचार। विशेषज्ञ थे डॉक्टर कुलदीप सिंह, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। भेंटकर्ता थे मनोज कुमार जी।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते गुनगुनाते
1: सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
5: हम आकाशवाणी के गुरु

0: केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे खेती किसानी। इसमें राहुल कुमार सिंह और विनय कुमार जी बातचीत कर रहे हैं। विषय है मोटे अनाजों की गुणवत्ता और खेती से लाभ।
1: समय परिवर्तनशील है, जवना चीज का एक समय कदर ना कही जात रहे ओकर आज बाजार में बहुत मांग बा। उपयोगिता के दृष्टिकोण से, पोषक तत्व से भरपूर, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से औरी तो औरी प्रकृति के प्रति सहनशीलता रखे वाली फसल जौना के हमन का प्राचीन काल से उगावल जात रहल है आ अब हमन का ओके मोट अनाज के नाम से जानल जाला। अपने सरकार का भी मंशा बा कि लोगन के अंदर जन जागरूकता पैदा कईल जा, मोटा अनाज, छोटा अनाज, सुपाच्य अनाज आ हर तरह के बीमारी से लड़ना के सक्षम अनाज। आज एकरे बारे में भरपूर जानकारी देवे खातिर अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल है डॉक्टर राहुल कुमार सिंह। आप है कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हम स्वागत करतनी। आप ही बताएं कि मोटा अनाज के विशेषता के अलावा और कौन कौन एकर उपयोगिता बा।
2: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मोटे अनाज के विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि ये जो मोटा अनाज है ये कोई नया शब्द नहीं है या फिर नई इसके अंतर्गत आने वाली फसलें कोई नई फसलें नहीं है, बल्कि अपने सभ्यता में, अपने संस्कृति में, अपनी परंपरा में एक पुराना इतिहास रहा है। अगर भारतीय परंपरा की बात की जाए तो मोटे अनाजों का जिक्र जो है वो यजुर्वेद से ही मिलता है। अगर प्रमाणित तौर पे देखा जाए तो आज से करीब 6,500 वर्ष पूर्व से ही हमारे पूर्वज मोटे अनाजों का उपयोग करते थे अपने खाने पीने की तौर पे, और आज से करीब जो है 50 से 60 वर्ष पूर्व तक इन मोटे अनाज का जो प्रचलन है वो अपने भारत देश में बहुत ही व्यापक तौर पे था। अगर कुल खाद्यान्न में इसकी हिस्सेदारी देखी जाए तो लगभग 40% तक जो है हम मोटे अनाजों पे जो है डिपेंड थे। तो पहले हम ये जानते हैं कि मोटा अनाज होता क्या है, इन्हें मोटा अनाज क्यों कहते हैं। देखिए, मोटा अनाज कहने के पीछे जो है इसकी लोगों की मंशा है वो ये है कि ये ऐसा अनाज है, ऐसी फसलें हैं ये कि जिसकी उत्पादन लेने में जो है ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आप कम पानी में, कम रासायनिक खाद के उपयोग में और कम उपजाऊ मिट्टी में, कम श्रम के साथ जो है आप बहुत ही अच्छी से अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ न केवल जो है कम लागत में आप जो है इससे अच्छा उपज ले सकते हैं, यहीं इसका दूसरा लाभ ये भी है कि ये जो उपज है, इसके जो अनाज है, जैसे इसमें जो आने वाली फसलें हैं उस पर एक बार बात रख लेते हैं। मोटे अनाज में आने वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, मड़ुआ, शावा, कोदो, काकून, चेना तथा जो है कुटकी है। तो इन फसलों में इसका एक दूसरा जो लाभ है, पहला तो ये है कि आप बहुत ही कम संसाधन में, कम लागत में, कम खाद में, कम पानी में आप अच्छा उपज ले लेंगे, और दूसरा ये है कि आप इसके पोषक जो मान है, जो पोषक ये जो है पूरी तरह से भरपूर है। और जैसे आपने ही बताया कि काफी जो है सुपाच्य होता है। अगर इनमें से कुछ अनाजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो बाजरा जो कि मोटे अनाज का एक बहुत ही अहम फसल है, इसमें प्रति 100 ग्राम खाद्य हिस्से में 361 किलो कैलोरी की जो है ऊर्जा इससे मिलती है, जो कि अन्य हमारे धान गेहूं वाली फसलें हैं इससे जो है कई गुना ज्यादा है। अगर इसमें लोहे की मात्रा देखी जाए तो इसमें लौह पदार्थ प्रति 100 ग्राम हिस्से में 8 mg जो है वो लौह पदार्थ मिलता है। उसी तरह अगर आप रागी पे देखेंगे तो रागी में जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की मात्रा मिलती है, प्रति 100 ग्राम खाद्य हिस्से में लगभग 344 mg जो है कैल्शियम मिलता है, जो कि अन्य किसी भी फसल में इतनी मात्रा में कैल्शियम की पूर्ति आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार ज्वार है, मक्का है, रागी है, ये सारे फसलें जो हैं पोषण से भरपूर हैं और जो है ये ज्यादा सुपाच्य हैं, और इनका लगातार सेवन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो निश्चित तौर पे दीर्घायु या फिर अच्छी उम्र उन्हें जो है मिलती है। अगर हम इसके जो है इसको अगर आर्थिक रूप से अगर एक तुलनात्मक अध्ययन करें धान और गेहूं को लेकर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि खरीफ 2022 के लिए सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है उसमें धान का जो A1 या A क्लास का जो

0: उपज है उसके लिए 2060 रुपए। उसकी तुलना में अगर अन्य दो मोटे अनाज हैं जो जो खरीफ में बोई जाती हैं, जिसमें ज्वार आता है, बाजरा है, रागी है और मक्का है, बाकी अन्य फसलें हैं, ये मुख्य फसलें हैं, तो धान की तुलना में आप अगर देखा जाए तो ज्वार का जो है 2990 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंटल जो है वो सरकार देती है। बाजरे की बात की जाए तो बाजरा का 2350 रुपये और रागी का जो है 3578 रुपये, जो कि धान की तुलना में देखा जाए से भी ज्यादा है। तो ये न केवल पोषक से भरपूर है, न केवल कम लागत इसमें लगता है, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इसका ज्यादा है। अगर वर्तमान के समय में सरकार आय बढ़ाने की बात कर रही है, पोषण वाले अनाज को उपजाने की बात कर रही है, कोरोना जैसी महामारी के बीच में देखा गया कि गुणवत्ता युक्त तो पोषक से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए जो सुपाच्य हो और जिसमें जो है मनुष्य को बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाए, तो ऐसे परिवेश में, वर्तमान परिवेश में, इस आधुनिक युग में लोगों का मोटे अनाजों की तरफ, जो हमारे किसान भाई हैं उनको मोटे अनाजों की तरफ जाना जाने के बारे में निश्चित ही सोचना चाहिए, तभी उनको अपने उपज से अच्छा दाम मिल पाएगा। और जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भारत सरकार भी इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है। इसके क्रम में वर्ष 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था मोटे अनाजों के लिए, और आने वाले समय में अगर 2023 की बात की जाए तो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यानी कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं हमारे किसान भाई कि आने वाला जो समय है वो पुनः जो है हम अपने पुराने दौर की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि ये मोटा अनाज आज भी भारत इसमें पूरी दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, और आने वाले समय में जब जबकि एक वैश्विक लेवल पे इसकी मांग बढ़ती जा रही है, तो किसान भाई मोटे अनाजों की खेती करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस मोटे अनाजों की उपज लेके जो है अच्छी उपज लेके ज्यादा से ज्यादा लाभ वो कमा सकते हैं।
1: प्रकृति में जौन उतार चढ़ाव होला, वर्षा का, गर्मी का, हवा का या सूखा का, ओकरे प्रति यह पौधन का कौना तरह से रुझान होला?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और उसका एक ये तीसरा लाभ, ये और सबसे बड़ा लाभ है मोटे अनाजों की खेती करने में, कि हमारे किसान भाइयों को अगर कम बारिश हुआ, इसी समय जलवायु परिवर्तन की समस्या जो है ये वैश्विक पटल पे कृषि जगत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इसलिए जब जलवायु परिवर्तन की ऐसी समस्याएं देखी जा रही हैं, खरीफ के सीजन में वर्षा का कम होना, कभी रबी के सीजन में पानी का ज्यादा हो जाना, तो ऐसी विकट परिस्थितियों में जो है ये मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए एक अच्छे उपज और अच्छा आय देने वाली जो है सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ये मोटा अनाज कम पानी मिलने पर भी जो है ज्यादा से ज्यादा उपज जो है देने की इसमें शक्ति है। अगर इसको जो है धान के से अगर कंपेयर किया जाए, धान से एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 1 किलोग्राम धान पैदा करने में करीब 4,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि अगर आप मोटे अनाजों से इसका इसकी तुलना करेंगे ज्वार और बाजरा या फिर रागी से, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इससे कम प्रतिशत, कम से कम लगभग 40% कम पानी में ही जो है आप मोटे अनाज को पैदा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कम पानी में, कम खाद में और कम उपजाऊ मिट्टी में भी आप इससे जो है अच्छी उपज ले सकते हैं। तो ये आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि आय बढ़ाने का बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि अपने देश और वैश्विक जगत की जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और निश्चित रूप से जो है ये विश्व जगत इन मोटे अनाजों का सेवन करके वैश्विक लेवल पे जो है विकास की जो गति है वो और भी तेजी से बढ़ने वाली है ऐसे अनाजों का सेवन करके।
1: डॉक्टर राहुल सिंह, आप इतना अच्छा जानकारी देली, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बातचीत, विषय था मोटे अनाजों की गुणवत्ता और खेती से लाभ। बातचीत कर रहे थे डॉक्टर राहुल सिंह और विनय कुमार जी। इसी के साथ खेती किसानी का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो चला है समाचारों का, जो आपसे कुछ ही देर में प्रस्तुत होंगे।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज।

0: देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांगण भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांगण मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति

0: सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली NCR में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई EMI नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक VK बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ

0: मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़ गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2-दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

चीजों के ही लोकनी आधुनिक गीत विविध कलाकार को स्वरमा तप्रथम स्वीकार हो सियो लोकगीत यमुना देवान को स्वरमा जिसमा शब्द ने संगीत गणेश कुमार घिसिंग को

0: यह प्रसारण हो आकाशवाणी का अब सुनो समाचार।
1: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो, अब समाचार संध्या शर्माबाट सुन्नुहोस्। प्रथममा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री मोदीले इन्डोनेसियाको योग्यकार्ता स्थित प्रम्बानन मन्दिर

वाचक देवेन थापा। विषय छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र इन्डोनेसिया बीचको बढ्दो साझेदारीमाथि प्रकाश पार्नुभयो। आलेख विदेश सेवा डेस्क एनएसडी आकाशवाणी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोले मंगल

0: मतलब बड़ा भाई होता है शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और मेरा अगर कोई बड़ा भाई होता शायद मेरे लिए वो भी उतना नहीं कर पाता जितना इन्होंने किया, तो थैंक यू दादा।
1: भारतीय टिमलाई हाई स्ट्यान्डर्डमा सेट अनि टिम कल्चरलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्नको श्रेय सौरभ गाङ्गुलीलाई जाँदछ। तर समय अर्को कुरोको तयारीमा थियो। सन् 2004-05 बीच त्यो सिरिज आयो जहाँ सौरभ गाङ्गुलीलाई डाउनफलको बाटो देखायो। त्यस समय अस्ट्रेलियाले भारतलाई भारतकै भूमिमा 2-1 पराजित गर्यो। यो हारपछि सौरभ गाङ्गुलीलाई एउटा हारेको कप्तानको लाञ्छना लाग्यो। ठिकठाक प्रदर्शन गरे तापनि अक्टोबर 5 सन् 2005 दादालाई टिमबाट ड्रप गरियो।
2: हाय, मेरा नाम सौरभ गाङ्गुली है। भूले तो नहीं, जो हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था, पर अब नहीं। मैं टीम में वापस आने के लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या मालूम हवा में शर्ट घुमाने का मुझे और एक मौका मिल जाए। जो भी हो, टीम के अंदर या बाहर, मैं चुप बैठने वाला नहीं
3: हूँ। इंडिया
2: के हर मैच में मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा, आप भी चिल्लाएं, मेरी टीम को अच्छा लगेगा। अपने दादा की बात सुनेंगे ना?
1: तत्कालीन प्रशिक्षक ग्रेग च्यापलले सौरभ गाङ्गुलीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउँदै कप्तानीबाट हटाए। तिनलाई कप्तानीबाट त हटाइयो, तर तिनको ब्याटिङ एग्रेसनलाई भने कसैले हटाउन सकेन। त्यसपछि पनि एउटा खेलाडीको रूपमा सौरभ गाङ्गुलीले उत्कृष्ट पारीहरू खेले, तर तिनीमाथि भएको व्यवहारलाई तिनले भुल्न सकेनन् र सन् 2008 तिनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरे।
4: Former India captain walking out to the centre. The last time he's coming out to bat in Test match cricket.
1: तर जाँदा जाँदै सौरभ गाङ्गुलीले एमएस धोनीको हातमा एउटा सशक्त भारतीय टिम सुम्पे, जसले दुश्मनलाई उसैको धरतीमा उसैको भाषामा जवाब दिँदै सिरिज जित्ने दम राख्थे।
0: 2000 म्याच भी जित लेंगे, बट जो इन्होंने किया है इंडियन क्रिकेट के लिए उससे ज्यादा अचीवमेंट्स तो कर ले, बट कोई इनके रुतबे को मैच नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना भी और ये मेरा दावा भी।
1: इस प्रकारको एक इम्प्याक्टफुल प्लेयर संसारमा धेरै समयको अन्तरालपछि मात्र आउँछन्। सायद यस प्रकारको जुझारु खेलाडी सायदै अब कहिले जन्म लिन्छन्।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। अब से कुछ ही देर में हम पुनः प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं

आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।

0: लाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपकी साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राड़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
0: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी।
0: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी, जी।
0: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी।
0: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूं कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूं, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
0: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूं, मुझे अपना बचपन और गांव गिराव बहुत याद आता है, वहां की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
0: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूं, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूं।
1: जी बिल्कुल।
0: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूं, और वहां पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहां मुझे संस्कृत का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूं, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूं, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूं मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूं। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से। उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
0: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
0: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
0: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
0: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है, तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
0: आ जाता है।
1: तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा, इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ाव रहा है। जैसे

0: आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है। ये लोग मुझे लिखते रहे हैं तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-2,500 शब्दों का लिखते हैं या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: निश्चित रूप से, मैं तो मानता हूं कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहां कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पल्वित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं, तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं, तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे, कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास, तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है, तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूं, ना मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
1: जी,
0: और
1: जी।
0: मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है, और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
1: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: जी, जी।
1: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा में पढ़ रही थी
0: जी, जी।
1: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
0: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन अरुबानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर की मैं कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है, और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिनु बानी नहीं है, नयन और बानी है, और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीजें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
1: जी।
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक है, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनु बानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उसे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
0: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अय्याराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे

0: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
1: ललित निबंध के सामने मुझे एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
0: जी,
1: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
0: जी।
1: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि यह हृदय पक्ष है। इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
0: अच्छा
1: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
0: जी
1: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
0: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
1: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही

0: सामान्य विषय लिया गया है
1: जी।
0: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी
1: जी।
0: है। एक दिन मैं, एक सब्जी होती है कुंदरू,
1: कुंदरू की,
0: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं। वो बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी।
0: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबाधरोष्ठी
1: जी,
0: मध्य क्षामा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबाधरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
0: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के इस छंद को पढ़े होंगे वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को।
1: जी,
0: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था। मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय
1: अच्छा,
0: पीता हूँ
1: जी।
0: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा, कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया, कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृद भांडे निकलेंगे, तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है, कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहां से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित निबंध अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहां से फिर मैं ललित निबंध की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित निबंध
1: जी। तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह की निबंध छपते हैं, तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: ये
1: हम समझ सकते हैं जी। तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे पगला
1: कभी भी। क्या बात
0: जी,
1: है फिल्म पगला कहीं का
0: जी,
1: ये गीत हम सुनते हैं और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
0: जी,
1: कर पाएंगे
0: जी। हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा। तुम

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं, उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदागिरी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था, लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो। 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई, मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई, आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूं मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाओ, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र

0: करीब करीब 87-88 साल थी।
1: अच्छा
0: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
1: जी
0: गोलोकवासी हुई अभी इसी 31 अक्टूबर को।
1: जी
0: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा।
1: जी
0: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली ही मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
1: क्या बात है।
0: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया।
1: जी
0: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
1: क्या बात है।
0: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज्यादा, करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फोन पर की क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था।
1: जी।
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है।
1: जी।
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी।
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है।
1: जी बिल्कुल।
0: आप कहें तो उसको मैं 2 लाइनें उसको
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है।
0: जी।
1: कि लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ।
0: जी 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़ करके हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं।
1: जी
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल। तो रैडी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं। कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा,
0: ज्यादा ही रहा,
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन वो सब कविताओं पर मिले। चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी, मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदन्ति। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वह विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज्यादातर गांवों पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने जमाने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो इस संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा, संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है। खैर, यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को साधारण

0: मन है, मिस्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिस्र जी में यह भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकार की भाषा में चमचागिरी कहते हैं, यह शब्द ब्रामदर्स मिस्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली और साहित्य उनका उच्च स्तरीय। तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिस्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था। तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिस्र जी के जीवन के, साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
1: जी,
0: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहां तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी वो दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की अवतार थी। कितने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए, खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिस्र जी पर संस्मरण लिखा।
1: अच्छा।
0: उनकी पुत्र वधु ने लिखा। उनकी बेटी स्मिता जी हैं, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्स मिस्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्स मिस्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूं, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
0: जी,
1: हैं
0: जी, हाँ, जी,
1: उसके
0: जी,
1: बाद आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं।
0: जी मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
1: जी।
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरे गीत अमर कर दो,
0: ये मुझे बहुत पसंद है।
1: बहुत सुंदर
0: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
1: आई सुन जी।

0: रायडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है वो आपको कैसी लगी? मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीजें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम है, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं। ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीजें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थाई चीज है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां किताब के नाम के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियां नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आजादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे, उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियां लिखें, स्त्री को आगे ले आएं, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खासकर के स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, वो योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है
0: जी।
1: जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है? कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगे, उनकी जो पात्र हैं, वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं, उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं है। इस चीज को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है, और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है, उसमें साहित्यकारों का योगदान है, और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
0: बहुत सुंदर।
1: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं। उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था, कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ। मैं मानता हूं कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया,

0: उसको उसकी जगह चाहिए, तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था, क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियां लिखी हैं। तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: जी उंदाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है। मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ। मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी जबरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ। बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीजें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आ कहें, मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीजें आए तो सोचता ये हूं कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल से,
1: क्या बात है,
0: नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स एवं 100.1 FM पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे को हैं आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
3: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीनों देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री

0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात और केरलम के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये अभियान स्वस्थ और अनुशासित युवाओं के निर्माण पर केंद्रित महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण पहल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा। टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: के पहनना। तो डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपका दोस्त मनोज यादव। दोस्तों हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से। समय बीत जाने पर लौटता नहीं है, इसका सदुपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, समय अनमोल है, इसे बर्बाद मत करें। दिन का प्रमुख काम सुबह तय कर लें और उस पर पहले मेहनत करें। इस सुविचार के बाद दोस्तों लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट।

0: दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम ने जो विषय है वो है प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका या रोल। इस विषय में बातचीत करने के लिए हमने बुलाया है प्रोफेसर तेजस्वी दुबे जी को, जो है ट्रेनिंग और प्लेसमेंट हेड MBA फैकल्टी DDU गोरखपुर में। तेजस्वी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत

0: बहुत धन्यवाद मुझे आकाशवाणी गोरखपुर में इतना मौका देने के लिए, और ये तो मेरा विषय ही है जिसमें मैं पढ़ाती हूँ।
1: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबंधन मैनेजमेंट में क्या रोल है?
0: देखिए, जब मैं बात करती हूँ कि प्रबंधन क्या है, तो प्रबंधन क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करने को ही हम प्रबंधन कहते हैं। और मेरे विचार से जब हम इसमें आईटी को लेके आते हैं या जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, तो हमारा जो वर्क होता है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ होता है, अच्छा होता है, और जो उसकी पहुँच होती है वो बहुत ही व्यापक होती है, और जो काम की गुणवत्ता होती है वो भी बहुत इम्प्रूव कर जाती है। तो प्रबंधन और आईटी अगर आज की डेट में मैं बोलूँगी तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। और प्रबंधन हमें स्मार्ट वर्क करने को सिखाता है, जो बिना आईटी के संभव नहीं है। तो अगर आपको टाइम चाहिए, समय चाहिए, गुणवत्ता चाहिए, तो प्रबंधन में आईटी का उपयोग करना ही पड़ेगा।
1: जी तेजस्वी जी, हम जानते हैं कि ईआरपी और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको कुशल बनाने के लिए कस्टमर इंटेलिजेंस और प्रोसेस ऑटोमेशन संभव है, तो ये किस तरह से आज के दौर में प्रबंधन को सुदृढ़ कर रहा है?
0: देखिए, अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले अगर हम बात करें जो TQM टोयोटा कंपनी लेके आई थी, तो वहाँ पे उनका ये था कि हम अपनी जो फ्लॉस को है वो कम करें। अब जब हम इसी चीज़ को धीरे धीरे आगे लेके आते हैं, तो अब हमारा पूरा ग्लोबल मार्केट है, हर कंपनी की जो पहुंच है पूरी दुनिया के लेवल पे है, तो हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो कि बहुत व्यापक हो और जो पूरी दुनिया में यानी ग्लोबल लेवल पे अपनी प्रेजेंस रखता हो। तब आईटी की हेल्प से हमने दो चार सिस्टम जो डेवलप किए, उसमें ईआरपी और सीआरएम बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां ईआरपी है तो हमारे इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, यानी जो कंपनियां ईआरपी यूज करती हैं उनका मैन पावर बहुत अच्छा मैनेज होता है, उनका इन्वेंट्री बहुत अच्छा मैनेज होता है, उनका टाइम सेविंग होता है, उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत अच्छी होती है। तो कुल मिला के ईआरपी के बिना तो आज की डेट में आप संभव ही नहीं है कि 10,000, 1,00,000, 2,00,000 लोग इंप्लॉयज की कंपनी को मैनेज करें। और जब हम इसी तरीके से बात करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, तो आपको भी याद होगा आज के 20 साल पहले जब हम फोन लेते थे या सिम यूज करते थे, बहुत बेसिक एग्जाम्पल की बात मैं करती हूँ, तो हमारे पास कोई कस्टमर केयर का नंबर नहीं हुआ करता था। हम बार बार सेंटर पे जाते थे, उनसे बोलते थे कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब आज की डेट में अगर देखो, बहुत बेसिक एग्जांपल है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है हम सिर्फ कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और भी बेसिक एग्जांपल की रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम आ गई और मैंने उनके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नंबर पे कॉल किया, उन्होंने वीडियो कॉल पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो आप ये देखो कितनी छोटी छोटी चीजों में हमारा इतना बड़ा वर्क चल रहा है। तो जहां हम लाख आदमी की कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं, वहां तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब इसको और व्यापक स्तर पे लेके आ रही है AI।
1: तो क्या ईआरपी और सीआरएम जो सिस्टम है उसमें कोई सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी का ही यूज होता है, किस तरह से ये काम करती है?
0: देखिए, सॉफ्टवेयर तो है ही, सॉफ्टवेयर के साथ ही काम करते हैं। और जितनी जितनी जरूरत होती है, जैसे ईआरपी का भी आप लिमिटेड उपयोग है, अगर मार्केटिंग की कंपनी में आप काम करते हो तो वहां के लिए जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होगा उसका पैकेज अलग होगा, यानी उनकी सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग होंगे, उनके डिविजन अलग होंगे। एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है तो वहां पे अलग हो जाएगा। तो डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट कि किस तरह की है। जैसे सीआरएम की अगर आप बात करो तो जो सर्विस इंडस्ट्री है वहां पे सीआरएम का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आप वहीं मैन्युफैक्चरिंग में लेके आ जाते हो तो सीआरएम का रोल अप टू अ लेवल लिमिटेड हो जाता है। तो जैसी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से इन सॉफ्टवेयर का यूज है आज की डेट में, जो कि प्रबंधन के लिए मैं सोचती हूँ रीढ़ की हड्डी है आज की डेट।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे कि आईटी जो है आज के दौर में किस तरह की प्रक्रियाओं को कैसे चेंज कर रहा है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो हमारे श्रोताओं को बताना चाहें।
0: देखिए, मुझे आज की डेट में जो इंडिया जिसमें मैं कहती हूँ पायनियर है या नंबर वन है UPI ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें, तो आज की डेट में आप ये देखो, आज के 20 साल पहले हम पैसे लेके दौड़ते थे, बैंकों में लंबी लाइन लगती थी। जैसे ही UPI आया, हम एक फोन लेके चलते और हमारा सारा काम होता है। मैं नारियल पानी पीना, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यही तो रोल है और ताकत है आईटी का। जैसे ही कंपनीज आई, डेटा सस्ता हुआ और हमने अपना UPI लॉन्च किया। तो आईटी का सबसे बड़ा, आप देखो दैनिक जीवन में हम कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं। हमारे फोन में डेटा है, हम UPI से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सॉल्व करते हैं। यानी हमारा बैंकिंग का जो ट्रांजेक्शन था वो कितना कम हो गया आप देख लो। या लोकल लेवल पे हम कहीं जाते थे, आज की डेट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने 20 साल पहले MBA किया तो उस समय हमारे पास ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं हुआ करते थे, तो हमें कंपनीज की डिटेल जाके चेक करनी पड़ती थी। अब आज की डेट में आप देखो, गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या जितने भी लोकल वेबसाइट्स हैं, तो कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि आईटी के आते ही एक रेवोल्यूशनरी
0: रिवॉल्यूशन चेंज हुआ।
1: जी, रेवोल्यूशन चेंज।

0: है समाज में। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस जो टूल्स हैं उसका प्रबंधन में क्या योगदान है?
1: देखिए, डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ह्यूमन की बात करते हैं, अगर हम किसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं तो ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। जैसे हम डेटा एनालिटिक्स को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारे बहुत से काम जो हम मैनुअल करते हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं और जिसमें बहुत सारे मैन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा सेव हो जाता है। तो पहला चीज हमारा जो बचा, टाइम बचा। दूसरा चीज, हमारी परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी बहुत लिमिटेड, नियर अबाउट 100% के पास जाती है। दूसरी चीज, बिजनेस इंटेलिजेंस में जब हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो डिसीजन मेकिंग हमारी बहुत एक्यूरेट होती है। देखिए, एक एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं, अगर हम इसमें डेटा एनालिटिक्स को और बिजनेस इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, तो देखिए डेटा एनालिटिक्स को जब हम यूज करें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, तो हमारे लिए ये जज करना बहुत ईजी हो जाता है कि हमारी इन्वेंट्री कैसे मैनेज हो, हमारा वर्कफ्लो कैसे मैनेज हो और हमें कैसे लोगों तक चीजें पहुंचानी है। जब हम बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो बिजनेस इंटेलिजेंस हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत एक्यूरेट होता है, तो डेटा एनालिटिक्स के हेल्प से हम बिजनेस इंटेलिजेंस को इंप्रूव करते हैं। एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं तो बेस्ड ऑन द डेटा हम वहां पर डिसीजंस लेते हैं, कस्टमर मैपिंग कर लेते हैं, ज्योग्राफिकल मैपिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें इतनी हेल्पफुल हैं। मैं सोचती हूँ कि आज के 20 साल पहले कैसे कंपनीज वर्क करती होंगी विदाउट दीज ऑल दीज टूल्स।
0: इसी पे एक मेरा सवाल है कि डेटा एनालिटिक्स की हम बातें कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि डेटा एनालिटिक्स भविष्य के रुझानों को कैसे पहचानेगा और जो कस्टमर का बिहेवियर है, ग्राहक व्यवहार है, उसको समझकर एक प्रदर्शन मैट्रिक्स को किस तरह से वो सक्षम बनाएगा।
1: देखिए, जब हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो ये हम एक जगह से डेटा जो हमें प्रोड्यूस हो रहा है, या मान लीजिए हम बात करते हैं आज के डेट में ई कॉमर्स बहुत सक्सेसफुल है, तो ये डेटा एनालिटिक्स क्या करते हैं, ये हम जो सॉफ्टवेयर वहां यूज कर रहे हैं ये हमें पर्टिकुलर ज्योग्राफी के हिसाब से बताते हैं कि इस ज्योग्राफिकल सेटिंग में इस पर्टिकुलर एरिया से कस्टमरों का रुझान इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है। यानी हम एक जगह पे अपने ऑफिस में बैठ के अक्रॉस द ग्लोब हमारे किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है, किसकी रिक्वायरमेंट अच्छी हो रही है, ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जब हम इस चीज को समझते हैं तो भविष्य के लिए हमें इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत अच्छा होता है, दूसरी चीज हमारा टाइम सेविंग होगा, तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम फ्यूचर के डिसीजंस को इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। क्योंकि आप देखो, एलन वस्क, उन्होंने डेटा को एनालाइज किया, जब बात करते हैं कि कोई चीज गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर जाती और नीचे आएगी तो सबने बोला नहीं होगा, उनको पता था कि कुछ ऐसा लेके आना है, सेल्फ ड्रिवन कार्स। तो डेटा एनालिटिक्स का एग्जांपल है ना कि सब कुछ हो चुका है, आप क्या करना बाकी है, तो जो नया है वही तो डेटा के बेस पे किया। व्हाट इनोवेटिव यू कैन प्रोवाइड, एंड इनोवेशन इज द बिजनेस, जो आप इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे वही बिजनेस में कन्वर्ट होते हैं।
0: जी, बहुत ही आपने अच्छा एग्जांपल दिया है। और इसके बाद हम बातें करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, जो आजकल एकदम आम शब्द हो गया, लोग साइबर सिक्योरिटी की ही बातें करते हैं, तो प्रबंधन के क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उससे कैसे निपटा जाए?
1: देखिए, ये सबसे कहते हैं ना कि ज्वलनशील टॉपिक है आज की डेट में। जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी पे अभी हमें बहुत सा वर्क करना है। मेरे विचार से अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां हम बोले कि हाँ, साइबर सिक्योरिटी में भी हम 100% काम कर रहे हैं। जितने इनोवेशन हो रहे हैं डेटा थ्रेट का, वहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क भी आ रहा है। तो जब हम प्रबंधन में साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो तो देखिए, कंपनी जो अच्छी है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, जीएसटी उस तरह की वेबसाइट्स को मैनेज करती हैं, को लेके करिए, कभी कभी उन पे भी हैकिंग होती है, विकीलीक्स का आप एग्जाम्पल आपके सामने है, तो वो क्या करते हैं कि अपने खुद के सर्वर पे काम करते हैं, ठीक है, उनका सिक्योर्ड सर्वर होता है, इनक्रिप्टेड होता है, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, बट स्टिल अभी भी डेटा इज नॉट 100% सिक्योर। तो इसमें हमें बहुत से अभी नए वर्क करने पड़ेंगे, लोगों को आगे आना पड़ेगा, कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर करने पड़ेंगे और कुछ ऑथेंटिक जो हैकर्स होते हैं उनकी हेल्प, जैसे आज की डेट में प्रशासन और तमाम कंपनीज और कॉर्पोरेट्स लेती हैं, उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कभी यूनिवर्सिटी की किसी साइट हैक होती है, कभी किसी गवर्नमेंट साइट पे, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो अभी हमें इस पे बहुत वर्क करना है।
0: जी दोस्तों, बातें हमारी जारी रहेंगी, लेकिन इससे पहले लीजिए सुनिए।

0: अब हम बातें करते हैं, जो सरकारें हैं एमएसएमई पे बहुत जोर डाल कर रही है और मेक इन इंडिया को प्रोजेक्ट भी कर रही हैं, लेकिन आईटी की जो लागत है उसे ये कंपनियां किस तरह से निपटेंगी?
1: देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अभी मैं कुछ दिनों पहले किसी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम, एक सॉफ्टवेयर की कीमत 3 से 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ 10 करोड़ है, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। मेरा वहां पे ये चीजें कहना सबसे पहले कि जिस हिसाब की अगर एमएसएमई है, एसएमई है या बिग एंटरप्राइजेस है, अभी तो बेसिक वर्क करने के लिए अगर हम बात करते हैं, जहां पे हमारा 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, वहां पे बेसिक चीजें तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जो हमारा आज की डेट में तो हम मोबाइल से हैंडल कर लेते हैं। जब हम इसके ऊपर में जाते हैं तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे टैक्स में रिलीफ दे रही है, बहुत सारी चीजों को प्रमोट कर रही है, और आज की डेट में कुछ बड़ी कंपनीज अभी अगर आप देखोगे वो आ रही है जो ऑफिस ऑटोमेशन में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बहुत से सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स अगर आपके स्कीम्स अच्छे हैं, कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लेके आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा वर्क हो रहा है। बट अभी हमें इसको डेटा माइनिंग जो आप कहते हैं ना, अभी हमें डिक करना पड़ेगा कि कहां से सर्च करें, रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप ईआरपी की बात करो तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसका बहुत व्यापक रोल

0: होता है एडवर्टाइजमेंट कंपनी में सिर्फ एक विंग को कैटर करता है। तो सबसे पहले तो आपको उसको एक पूरा फॉर्मुलाइज करना पड़ेगा ना कि रिक्वायरमेंट क्या है और हमें क्या चाहिए, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे।
1: अब बातें करते हैं कि किस तरह से आईटी जो ह्यूमन टच है उसको खत्म कर रहा है, या आप क्या सोचती हैं जो कर्मचारी हैं, ये जो एम्प्लॉइज हैं, उनके टीम वर्क पे आईटी किस तरह से प्रभाव डालता है?
0: देखिए, अगर मैं बात करूं और जितने भी आज की डेट में दुनिया में करंट डिस्कशन जो चल रहा है कि एआई आ रही है और इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, देखिए एक हद तक अगर आप देखो तो वाकई में एआई ने कुछ हद तक तो लोगों का काम कम किया है, लेकिन इसके अगर हम व्यापक पहलू पे देखें तो आज के पहले जब 20 साल पहले 30 साल पहले कंप्यूटर नहीं था तो भी तो हम काम करते थे, कंप्यूटर आई तो कहीं रिक्वायरमेंट घटी नहीं, लोगों की जरूरत पड़ी। और करंट एआई का कितना भी अपग्रेडेशन हो रहा है, जो मैंने अपने लेवल पे एक लूपहोल देखा है कि एआई भले ही ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है, बट वी कैन मैनिपुलेट। अगर हम उनसे एक सेट पैटर्न पे क्वेश्चन करते तो अपने ही आप आगे बोलता है। मैं अब आपको इसके बारे में बताऊं, मैंने रिसेंटली सुना कि अभी कुछ कंपनीज में कुछ एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो वहां पे इसलिए फायर किया गया, वो 100% एआई पे डिपेंडेंट हो गए। रोबोट बच्चे को खिला रहा, हमने सेटिंग कर दी कि आप इसको ऐसे टच करो, लेकिन समटाइम्स ग्रिप हार्ड होनी चाहिए, समटाइम्स स्ट्रांग होनी चाहिए। ये बेसिक जो डिसीजन मेकिंग है ये ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता, क्योंकि जो हम कहते हैं ना इमोशनल कोशेंट, हम कितने भी एआई को डेवलप कर ले, लेकिन इमोशनल कोशेंट सिर्फ ह्यूमन में है। तो ह्यूमन को मोर स्किलफुल होकर के काम अगर करते हो तो आने वाले टाइम में ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट
1: जी,
0: इट कैन नॉट बीट।
1: तो श्रोता जो सुन रहे होंगे कि एआई पूरी तरह से मानव को हटा देगा, एकदम उसके लिए चिंतित ना हो, क्योंकि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट हमेशा ही बनी रहेगी।
0: इमोशनल क्वेश्चंस सिर्फ ह्यूमन के पास है, ये हमारा कहते हैं ना यूएसपी है।
1: जी, अगला जो प्रश्न है वो है एआई मशीन लर्निंग का।
0: जी,
1: तो इसका भविष्य क्या है?
0: ये प्रश्न आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लग रहा है मुझे, क्योंकि आज ही मैंने मेरी टीसीएस से इस विषय पे 35-40 मिनट की लंबी वार्ता हुई है कि हम किस तरीके से एआई और मशीन लर्निंग को यूज करें जिससे हमारे बच्चे मोर एम्प्लॉयबल बने और ईस्टर्न यूपी में हम रोजगार के नए मतलब सृजन कर सके। तो जब हम एआई की बात करते हैं तो वहां पे हमारी बात चल रही थी, बीच में एक पॉइंट आया कि एआई ह्यूमन की तरह सोचने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब पहला ही पॉइंट आ गया कि कोशिश करे, ह्यूमन नहीं है। तो जैसे कभी कभी बात होती है, हम बातें करते हैं कि भाई एआई आ गया, सारा डिपेंडेंसी हो गया। जैसे मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, आप एआई को यूज करो बट डिपेंडेंट मत हो। कुछ कंपनीज है, जैसे अब आप देखो अगर पीआर इंडस्ट्री की आप बात करो, जो पब्लिक रिलेशन में है, मीडिया हाउसेज है, तो यहाँ पे एआई को बिल्कुल प्रिफर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जो आर्टिकल लिख रहे हो, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। जब आप एआई को यूज कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वो मशीन का टच आता है। तो वो डिफरेंट हो जाता है। सेम मशीन लर्निंग के साथ है, मशीन क्या है, अपने हिसाब से काम कर रही है, आपके डेटा को एनालिसिस कर रही है, डेटा को ऑब्जर्व कर रही है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रही है। तो भविष्य तो इन दो चीजों का बहुत अच्छा है और इसी के सहारे फ्यूचर की नींव रखी जा सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में कॉन्टेंट टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे वर्क हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भविष्य बहुत अच्छा है, बट मैं युवाओं से फिर भी एक बात कहूंगी जो मैं क्लासेस में कहती हूँ, पर्सनल लेवल पे कहती हूँ कि आप इसको यूज करो, अपने बैंक होनी चाहिए। जैसे मेरा बेटा है, मैं उससे कुछ बोलती हूँ तो जाता चैट जीपीटी पे सर्च करता है, तो मैं बोलती हूँ बेटा चैट जीपीटी आप चेक करो, बट ये मत मानो कि वो 100% एक्यूरेट है, क्योंकि वो भी तो डेटा कहीं से एनालाइज कर रहा है ना।
1: जी,
0: तो यू नीड टू हैव अ एनालिटिकल स्किल्स इन यू।
1: तेजस्वी जी, अब हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव से बताएं कि आईटी इम्प्लीमेंटेशन में सामान्य गलतियां कौन सी हैं।
0: ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मैंने देखा कि आईटी इम्प्लीमेंटेशन में ही मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलतियां करते हैं। जैसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का अभाव। हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हम किस पे वर्क कर रहे हैं। अब देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी हम बात करते हैं कि आप बच्चे जाए प्रबंधन में जाए और हम सब लोग एमएस ऑफिस का यूज करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ। अब इसमें नया क्या, एडवांस एक्सेल आ गया। अब एक्सेल के जितने टूल्स हैं, क्या हम उनको यूज कर पा रहे हैं? नहीं करना आता। कभी कुछ कंपनीज में, मैं नाम अभी नहीं बोलूंगी, तो मेरे पास जब उनका रिस्पांस है कि एडवांस एक्सेल में प्रोफिशिएंट नहीं है। आजकल ये बेसिक यूआई का एक चीज है, हम आईटी का यूज कर रहे हैं बट उसमें परफेक्शन की कमी है, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिर्फ डिग्री लेने से हम सेट पैटर्न पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं क्या होती है, तो बेसिक गलती मेरे हिसाब से यही है कि आप उसको बहुत इजी वे में लेके चलते हैं, हमें कंप्यूटर चलाने आता है, बट ये सफिशियंट नहीं। अगर आप एडवांस एक्सेल, एक्सेल से एडवांस एक्सेल पे आपका स्विच नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ है।
1: जी, चलते चलते अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, चूंकि आप

0: ट्रेनिंग प्लेसमेंट हेड भी है और सालों का अनुभव भी है आपको इस एमबीए के क्षेत्र में, तो एक प्रबंधक जो आईटी को बेहतर तरीके से कैसे उपयोग करे उसके लिए कोई 3 महत्वपूर्ण कदम क्या होने चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम तो ये होना चाहिए, हम जिस फील्ड में जिस विषय पे कार्य कर रहे हैं उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी से हमें फुली अवेयर होना चाहिए। जैसे आप ये बोलते हैं ना कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम साबुन ही बना रहे हैं, तो इसमें आईटी का क्या रोल है? बट यहाँ भी आईटी का रोल है आपके लिए। तो सबसे पहले अपने फील्ड को चुनिए, उससे रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए यूजफुल है। मैन्युफैक्चरिंग की आप बात करें तो डेटा माइनिंग यहाँ हो जाएगी, डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको एक्सेल आना चाहिए, एडवांस एक्सेल आना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी दूसरे, यानी लोगों तक कस्टमर इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका एग्जीक्यूशन, यानी आईटी को सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट यूज नहीं करना, उस एग्जीक्यूट भी करना है कि कहाँ पे हमें किस तरीके से यूज करना है। मार्केटिंग करोगे आप किसी प्रोडक्ट की, ब्रांडिंग करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इवैल्यूएशन। कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि हमने सारे काम सही किए, तो जो भी डिसीजन आप लो, जो भी क्षेत्र में आप आईटी के किसी भी टूल्स का यूज करो, उसको इवैल्यूएट करते चलो। अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी है, बट जेफ बेज़ोस ऑलवेज इवैल्यूएटिंग हिज वेबसाइट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि नहीं। आप फेसबुक का इम्प्लीमेंटेशन देख लो, फेसबुक फीडबैक इवैल्यूएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
0: कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है, तो चाहेंगे कि हमारे युवा श्रोता या जो श्रोता सुन रहे हैं उनको कुछ सुझाव या संदेश दें आप।
1: देखिए, मेरा सबसे बड़ा सुझाव तो आजकल के बच्चों से यही होता है, जो मैं अपने घर से लेके बाहर तक इम्प्लीमेंट करती हूँ, एआई को यूज करो नॉलेज गैदरिंग के लिए, उस पर बिल्कुल डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि ह्यूमन के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, इमोशन है, और जब हम इंटेलिजेंस और इमोशन का यूज करते हैं तो हम किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं। तो जो एनालाइजेशन पावर एक ह्यूमन के पास होती, वो मशीन के पास नहीं होती। तो मशीन का आप यूज करो जैसे आप बुक्स का यूज करते हो, नॉलेज को गैदर करो, बट एंड रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन योर इमोशंस एंड एनालिटिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन को मशीन ही रहने दो, ह्यूमन मत बनाओ।
0: जी धन्यवाद तेजस्वी जी, इतना बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं हम अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए अपने दोस्त मनोज को दे अनुमति, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिये मारा, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
6: आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: चंदन का एहसास।
1: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर

0: शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
1: पंचो जय हिंद। हाँ, पंच भाई लोगन नारा लगर और यही नारा के साथ ही जो है ना अपन बैठ की शुरू हो रहल बा। और पंच भाई लोग इस समय अपने खेत में धान का फसल लगा रहल बाटे और इस समय जो कहा जाता बारिश भी अच्छी ना हो रहल बा, फिर भी किसान भाई लोग जो है अपन काम तेजी से कर रहल बाटे। और आधुनिकीकरण के और भौतिकवादी युग में जौन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वन का कटाई करके उद्योग का स्थापना कर रहा बाटन, जिससे मौसम में भी परिवर्तन हो देखे के मिल रहा बा। कहीं तेज बारिश होती है तो कहीं बारिश ना होती है, तो ये तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा बा। और बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा खतरा जौन हो जाला आकाशीय बिजली से रहेला। और ऐसे बचे खातिर बादल गरजले के पहले ही पक्का मकान के अंदर लोगन के पंच भाई लोगन के चल जाए के चाहिए। जे भी खेत खलिहान में काम करत हो तो वो जौन भी पक्का मकानों के अंदर चल जाए, इससे वो सुरक्षित बनिए और खिड़की दरवाजा के अच्छे से बंद कैला।
2: सबसे खास बात यह है भैया लोगन की आकाशीय बिजली जब चमके ले तो ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ला। देश में हर साल करीब 2000 से अधिक लोगों के मौत ऐसे हो जाले, और खास करके उत्तर प्रदेश बिहार और जौन बंगाल में ज़्यादा लोग प्रभावित होला। तो हर साल खास करके जौन बरसात का मौसम होला एमन बहुत सावधानी बरतक चाहिए। खास करके जौन ज़्यादा जौन मौत होले वो भैया खेत में चाहे पेड़ के नीचे रहले से होला। ये लिए कोशिश करे के चाहिए कि जब मौसम ख़राब होके तो जल्दी से जल्दी जौन अपने घर पहुँच जाए।
1: हाँ, और तो जब भी देखा वो करें तो कोनो भी पेड़ के बारिश के मौसम में अगर जो बाहर आवा तो कोनो भी बड़े पेड़ के नीचे ना रुका, बल्कि उससे दूरी मैदान में चले जा। और मैदान में भी उकड़ू होके यदि बैठत हवा तो ऐसे भी आकाशीय बिजली से अपने आप के बचा सकत हवा। और बरसात जब हो रहा बा तो छत पे भइल चाहे इस तरीके से बारिश में भिगले का कोशिश न कर, काहे कि ऐसे जौन है उनके और धातु से बनल रेलिंग से दूर रहे के चाहिए। और जौन धातु का पाइप लगल हवा उनसे भी दूर रहे के, काहे कि बिजली का करेंटों में अइला का संभावना जौन है बढ़ जाला। और बिजली कड़कला के समय टेलीफोन मोबाइल आदि का प्रयोग न करें, और काहे कि ऐसे भी बिजली गिरले का संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाले। और तो और पंच भाई लोग जब भी अगर जो मान लो बिजली मौसम ख़राब हो तो उस समय सफ़र न करें, अगर जो सफ़र करत भी हो हाँ तो अपने कार का चाहे जौन भी वाहन में बाटो ओकर दरवाज़ा अच्छी से बंद कर लें, ओकर शीशा चढ़ा लें। और जे जैसे खुला वाहन में सफ़र कर रहा बाटा तो वो कहीं भी अपना सुरक्षित स्थान देख के ओकर सुरक्षित स्थान देख के वहाँ जा कर के रुक जाए, वो में सफ़र ना करें।
2: अगर कौनो भैया इमरजेंसी आ जाता तो 108 एम्बुलेंस पर फोन करें, चाहे 112 आपदा हेल्पलाइन जोन होला ऊपर भी फोन कही के जोन बात जानकारी दिया जा सकला। एक साथ साथ भी आकाशीय बिजली जोन जब तड़के ले तो मन डरेक नहीं चाहिए, सावधान रह चाहिए और सूझबूझ से काम ले चाहिए। खास करके भैया अगर खेत में काम कर समय जोन बा अगर आकाशीय बिजली चमकत या तो भैया एक ऐप होला डेमिनी ओके ऑन रखे चाहिए, इससे जोन बा बचाव होला।
1: अब तो सरकार भी मोबाइल पर मैसेज दे दिए कि कोनो भी मौसम खराब भले के 2 से 3 घंटा पहले मोबाइल पर मैसेज आ जात बा कि बारिश होई, बिजली कितनी तेज़ बारिश होखे वाली है के संभावना है। तो पंच भाई लोग ये बाती का विशेष ध्यान दें, अगर जो तरीके का अलर्ट जारी हो गया है तो उस समय खेत का काम कोशिश करें कि टाल के दें, ओकरे बाद ही वो काम के करें।
2: हाँ, खास भैया इस समय कुछ महीना से जौन भाई जौन हर मोबाइल पर अलर्ट आता तो जब भी मौसम खराब भले कौन अंदेशा बा उस समय ही अलर्ट आ जाता, जौने से हर आदमी की पता हो जाता कि आज जौन बा चाहे हवा तेज चले वाली बा चाहे बारिश होखे वाली बा चाहे तूफान आवे वाला बा एक जानकारी हो जाता भैया। ये बहुत बढ़िया जौन बा सुविधा मिल गई बा। ओकर साथ साथ भैया ये जानी कि जौन आकाशीय बिजली गिरेले खास करके दोपहर के समय में 2 से 5 बजे के बीच में ज़्यादा एक प्रभाव रहला, ये लिए इसमें ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।

0: हाँ भैया, देखो मोहन हुसैन भविल गीत सुनल गई भैया। जौन बा आजकल जौन आदमी के शरीर बहुमन तरह तरह के दिक्कत और समस्या आवत रहेले, जौन के कारण ओकर इलाज करावल जरूरी हो जाला। ऐसने में भैया स्टेम सेल भी जौन बा वही के एक नाम है, जौन के एक तरह से कहल जाए कि अगर आपके शरीर में कोनो दिक्कत बा तो ओकर मरम्मत करे खातिर, चाहे ओकर अंग खराब होता तो ओके रिपेयर कैले में एकर भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाला। ऐसे में भैया एकरे बारे में विस्तार से जानकारी खातिर आई एक वार्ता सुनल जा। स्टेम सेल की उपयोगिता जानकारी देते हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, तो इनसे सुनल जा ये जानकारी।
1: से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं के अपने अलग-अलग कार्य होते हैं। स्टेम सेल अर्थात आधार कोशिका या स्तंभ कोशिका उसे कहा जाता है जो विभाजित होने के बाद समय के साथ पुनः पूर्ण रूप में आ जाती है। ये कोशिकाएं इतनी सक्षम होती हैं कि इनमें पुनः निर्माण करके वांछित अंगों के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त इनमें दूसरे अंगों के रूप में परिवर्तित होने की भी क्षमता होती है। यह कोशिकाएं शरीर के किसी भी अंग की मरम्मत का कार्य कर सकने में सक्षम होती हैं। आधुनिक युग की अनेक उपलब्धियों में से स्टेम सेल अर्थात आधार कोशिका या स्तंभ कोशिका के द्वारा रोगी का उपचार एक क्रांतिकारी प्रभावी पद्धति के रूप में स्थान बना रहा है। इनकी इसी विशेष क्षमता के कारण चिकित्सा जगत में स्टेम सेल की उपयोगिता पर निरंतर शोध कार्य चल रहा है। स्टेम सेल को मुख्यतः तीन प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम स्थिति वह है जब मानव भ्रूण का विकास हो रहा हो। इस स्थिति में जब भ्रूण के तंतुओं से स्टेम सेल को प्राप्त किया जाता है तो उसे भ्रूण स्टेम सेल कहा जाता है। दूसरी स्थिति वह है जब शिशु का जन्म हो गया है और उसकी गर्भनाल सुरक्षित कर ली जाए। इससे प्राप्त स्टेम सेल को कॉर्ड स्टेम सेल कहा जाता है। तीसरी स्थिति वह है जज्ब वयस्क मनुष्य की अस्थि मज्जा या रक्त को स्टेम सेल प्राप्त करने का आधार बनाया जाए। चिकित्सकों ने भ्रूण से प्राप्त स्टेम सेल को सबसे अधिक उपयोगी और प्रभावी माना है। अत्यंत अविकसित इस अवस्था में एकत्रित स्टेम सेल में तीव्र विकास की प्रवृत्ति के चलते ही इसको अधिक प्रभावी रोगोपचारी श्रेणी में रखा गया है। भ्रूण से प्राप्त स्टेम सेल तथा जन्म के उपरांत गर्भनाल से प्राप्त स्टेम सेल को अंग उत्पादन की क्षमता के कारण सुरक्षित रखने के उपाय भी किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी कारण से यदि कोई अंग विकृत हो जाए तो उसकी सहायता से प्रभावी अंग की मरम्मत की जा सके। शून्य से 196 डिग्री नीचे के तापमान पर स्टेम सेल बैंकों में सुरक्षित स्टेम कोशिकाएं आपात स्थिति में उपयोग में लाई जाती हैं। स्टेम कोशिकाएं आश्चर्यजनक रूप से आनुवांशिक समानता की स्थिति में भी कार्य करती हैं। रोगों के उपचार में स्टेम सेल की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जागरूकता के कारण लोग इन कोशिकाओं को सुरक्षित कराने में विशेष रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। आंखों की कॉर्निया की बीमारी में स्टेम सेल प्रभावी विकल्प उपलब्ध करा रहा है। हृदयघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के स्थान पर स्टेम सेल से विकसित मांसपेशियों ने जीवन को आसान बनाया है। बढ़ती उम्र के कारण रोगों में स्टेम सेल कोशिकाओं के उपयोग से उनका उपचार संभव हो गया है। अधिकांश मामलों में रोगी की स्टेम कोशिकाएं ही काम में लाई जा सकती हैं। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पैदा करने

0: वाले तंत्र ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। इसके लिए रोगियों को हर 2 से 3 सप्ताह में रक्तदान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण इसका अगला बचाव का तरीका है, लेकिन इसका सही मेल ढूंढना आसान नहीं है। जब थैलेसीमिक में स्टेम सेल को अस्थि मज्जा में डाल दिया जाता है तो वे सामान्य कोशिकाओं के विकास को प्रोत्साहित करते हैं और समय के साथ ये सामान्य कोशिकाएं दोषपूर्ण कोशिकाओं से अधिक हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी की चोटों के मामलों पर नाभिक गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिकाओं के प्रयोग से उपचार किया जा सकता है। बच्चे का अचानक चलते चलते लड़खड़ा जाना या बैठकर उठने में समस्या होना, ऐसे कई लक्षण हैं जो बताते हैं कि बच्चा मस्कुलर डिस्ट्राफी जैसी बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन अभी तक लगभग लाइलाज इस बीमारी से जूझते लोगों के लिए स्टेम सेल चिकित्सा ने जीवन को आसान बनाकर आशा का नव संचार किया है। जब किसी आघात अथवा मस्तिष्क में चोट के चलते वहां की कोशिका नष्ट हो जाती है, जिससे तंत्रिकाओं एवं अन्य कोमल तंतुओं को भी नुकसान पहुंचता है, तब स्वस्थ वयस्क मस्तिष्क में न्यूरल स्टेम कोशिकाएं शामिल होती हैं, जो स्टेम कोशिकाओं की सामान्य संख्या को बनाए रखने या प्रजनक कोशिका बनाने के लिए विभाजित होती हैं। स्वस्थ वयस्क प्राणी में जन्मदाता कोशिकाएं मस्तिष्क में ही स्थानांतरण करती हैं तथा न्यूरॉन्स की संख्या को सामान्य बनाए रखने का प्राथमिक कार्य अर्थात गंधबोध हेतु संपादित करती हैं। पूर्ण रूप से परिपक्व मानव की लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हिमेटोपोटिक वयस्क स्टेम कोशिका द्वारा कृत्रिम रीति से किया जा सकता है, क्योंकि वे उन कोशिकाओं की पूर्व रचना ही हैं। इस प्रक्रिया में हिमेटोपोटिक वयस्क स्टेम कोशिका को स्ट्रोमल कोशिकाओं के साथ निर्मित किया जाता है ताकि ऐसे वातावरण का निर्माण हो सके जो अस्थि मज्जा के वातावरण का प्रतिरूप हो, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं का स्वाभाविक निर्माण स्थल है। इस तकनीक में और अधिक शोध करने पर जीन चिकित्सा के नए आयाम सामने आ सकते हैं। गंजापन या केशहीनता की समस्या का निदान भी स्टेम सेल के द्वारा संभव है। बढ़ती आयु के कारण सिकुड़ चुकी सर की त्वचा को संकेतों के माध्यम से पुनः जीवित करने की संभावना पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। दांतों को भी प्राकृतिक रूप से उगाने की संभावना पर काम चल रहा है। वर्ष 2004 में इंग्लैंड में वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में चूहों के दांत उगाने में सफलता प्राप्त की और ये स्टेम सेल तकनीक के प्रयोग से ही संभव हुआ। स्टेम कोशिका का उपयोग मानव ऊतकों के विकास में भी किया जा सकता है। घायल भ्रूण ऊतक के मामले में घायल ऊतक को स्टेम कोशिका की प्रक्रिया के चलते साधारण कोशिका में बदला जाता है। वयस्कों में ऊतक को पुनर्जीवित करने के लिए वयस्क स्टेम कोशिका रूपी बीज को घाव रूपी जमीन की मिट्टी के अंदर दबाकर और स्टेम कोशिका द्वारा घाव के ऊतक की कोशिका को दुगुना करने देना एक संभावित तरीका है। यह पद्धति एक पुनर्योजित प्रक्रिया को दर्शाती है जो कि भ्रूण के घाव के सुधारने वाली प्रक्रिया की तरह है, न कि वयस्क ऊतक में निशान बनाने वाली क्रिया की तरह। मधुमेह से पीड़ित रोगियों के मामले में मानव भ्रूण स्टेम कोशिका विकसित की जा सकती है और उन्हें उत्तेजित कर इंसुलिन के उत्पादन योग्य कोशिकाओं में बदला जा सकता है, जिन्हें रोगी में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इनमें आवश्यक है कि प्रतिरोपित कोशिकाएं पुनर्जीवित हों, प्राप्तकर्ता में जीवित रहें, लक्षित ऊतक के भीतर एकीकृत हों तथा मेजबान संचारित एवं स्थानांतरित होकर कार्य आरंभ कर सकें। घावों को भरने तथा बाजपन की समस्या का निदान भी स्टेम सेल तकनीक के पास है। इस प्रकार रोगोपचार की यह नवीनतम तकनीक मनुष्य की लगभग 80 बीमारियों में उपयोगी है।
1: पंच भाई, अभी आप सुनल गेल वार्ता स्टेम सेल की उपयोगिता जे पर जानकारी देत रहनी डॉक्टर प्रतिभा सिंह। इतना निमन जानकारी देवे खातिर इनके दिहल जा धन्यवाद। और यही के साथ ही अपने कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहल बात। लेवे के विदा। पंचो जय हिंद।

आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे को हैं, कुछ ही देर में आप हमारे केंद्र से क्रमशः भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ कैलें। यह योजना में मिले वाले 5 लाख रुपया तक का कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से प्रदेश के 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी आ उनकर आश्रित लाभ पाई हैं। यह मौका पर मुख्यमंत्री कहने कि विद्यार्थियन के सही राह दिखावल शिक्षक लोगिन का कर्तव्य भैले के सतही राष्ट्रीय दायित्व हवे।
1: आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें पहले तो ईश्वर करे कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो, लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, उन स्थितियों में जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है, उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री अजय चित्रकूट में 951 करोड़ रुपया के लागत के कई गो विकास परियोजना के लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल भइल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय अल नीनो के कई गो क्षेत्रन पर संभावित प्रभाव आ तैयारियन की समीक्षा बदे काल एगो उच्च स्तरीय बैठकी कैलस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्र के अध्यक्षता में ई बैठकी नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भइल। बैठकी में 15 से बेसी मंत्रालयन का सचिव आ सीनियर अधिकारी लोग हिस्सा लेना। एगो रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए, राज्यों के साथ मिलकर उन जिलों पर मानसून या देर से आए मानसून के असर का आकलन किया जाए जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सके। यह भी निर्देश दिया गया कि चारे की

पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं, साथ ही चारे के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएं और राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के

0: परीक्षा बदे उच्च स्तरीय बैठक की कैन है। पत्रकार लोग इनसे बतियावत श्री चौहान कहना कि केंद्र सरकार यह बरिस अप्रैल में अल नीनो के चुनौती से निपटले के तैयारी शुरू कर दिले रहल। वहाँ के बतौनी कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ आ नोडल अधिकारियन के जरिया से बुआई फसल और बाजार के स्थिति पर लगातार नजर रखल जा रहल हो। श्रीराम मंदिर के चढ़ावा में कथित हेराफेरी के मामला के 3 आरोपियन को पुलिस रिमांड आज से शुरू हो गई। यही कड़ी में 3 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा आ करुणेश पांडे के आज हिरासत में पूछताछ शुरू भइले से पहले चिकित्सा जांच बदे पुलिस लाइंस ले आवल गए। श्री अमरनाथ जत्रा बदे आज एगो नया परामर्श जारी कर गए बा। एगो रिपोर्ट।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी परामर्श के अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। यात्रा के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी जिलन में आज व बिहने कई जगह पर बरखा आ गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। विभाग की ओर से यह दौरान कहीं कहीं बिजली गिरले या भारी बरखों का येलो अलर्ट जारी कर गया बा। ए पीछे गोरखपुर के सतही पूर्वी जिलन में अजुओ सवेरे से आसमान में बादल छवले रहल आ रुक रुक के हल्का है बुन्नी परत रहल। समाचार पूरा भइल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से प्रदेश के 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और उनके आश्रित लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए सही मार्ग प्रशस्त करना शिक्षकों का कर्तव्य होने के साथ ही राष्ट्रीय दायित्व भी है।
2: आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें पहले तो ईश्वर करे कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो, लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, उन स्थितियों में जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री आज ही चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्र की अध्यक्षता में यह बैठक नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए, राज्यों के साथ मिलकर उन जिलों पर मानसून या देर से आए मानसून के असर का आकलन किया जाए जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। यह भी निर्देश दिया गया कि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं, साथ ही चारे के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएं और राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के लिए मंत्रालयों को राज्यों के साथ मिलकर आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। समाचार का

0: से विवेक सिंह।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुआई, फसल तथा बाजार की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। श्री राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले के तीन आरोपियों की पुलिस रिमांड आज से शुरू हो गई। इसी कड़ी में तीनों आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को आज हिरासत में पूछताछ शुरू होने से पहले चिकित्सा जांच के लिए पुलिस लाइन्स लाया गया। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी परामर्श के अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। यात्रा के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज और कल अनेक स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में आज भी सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी का क्रम जारी रहा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज झांसी के गरौठा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी की। यह छापेमारी लखनऊ तथा झांसी में एक साथ की गई। पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: पंचू जय
1: जय
0: जवान
1: जवान
0: जय
1: जय
0: किसान।
1: किसान।
0: अब ये देखो ये नारक साथे अपन बैठकी शुरू भइल। भैया किसान भाई लोग जोन बा उसे तो बारहो महीना कोनो कोनो खेत में कोनो कोनो फसल उगावत रहना और ओकर बुआई भी करत रहना। बाकी भैया ये समय बरसात का समय आ गइल बा। अब ये समय खरीफ के फसल के जोन बा उत्पादन के समय बा। ऐसने में किसान भाई लोग ज़्यादातर तो अब धान का
1: रुपाई
0: जो
1: करत बाटे।
0: रोपाई करत हवा और एक तरह से ये अंतिम चरण में चला था धान का रोपाई। ओकरे साथे साथे भैया कई तरह का दलहन का फसल भी लगावल जाला इस समय। तो किसान भाई लोग जौन भी दलहन का फसल लगावे ओकरे खातिर सबसे पहले जरूरी है कि ओकर बीज जौन ले आवत हों ओकर उपचार कैल भैया। काहे के बीज उपचार कैले के बाद जब ओकर बुआई होला तो ओमन पैदावार भी बढ़ेले और ओमन कई तरह के रोग से बचाव भी होला।
1: हाँ, ए मौसम में दलहनी फसल में जैसे हो गए मूंग हो गए उड़द हो गए और मसूर हो गए, लेकर जो है खेती कैल जाला। और पंच भाई लोग एकर कौनो भी जौन बीज उत्पादन तबे बढ़िया होला जब ओकर उपचार होखे।
0: खास करके भैया देखिए 100 रुपया का अगर उपचार खाते दवाई ले आते हैं आप तो उससे कम से कम 2,000 का आपका बचाव होता। उससे खास करके बरसात के समय में जब बीज जब खेत में डालल जाला तो वो ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा पानी हो जाला तो वह सड़ जाला चाहे गल जाला। तो अगर बीज के उपचार आप कैले रहें तो बीज जौन बा सड़ी गली ना आए और ओकर साथ साथ जैसे अगर ज़मीन में दीमक बाड़ा तब भी उसे भी बचाव करिए। सफ़ेद लट कर चाहे और कई तरह का जो रोग होला उसे भी अपने फसल का बचाव ये बीज के उपचार कैले से हो जाला। ऐसने में किसान भाई लोगों को चाहिए कि अपने बीज का उपचार जरूर करें। कहें कि जब भी बुआई होला तो अपन जो बीज के जमले जो क्षमता होले वो बढ़ जाले और ओकरे साथे साथे इतना वो मजबूत होला कि और कई तरह के रोग से बचाव होला और उत्पादन भी कम से कम
1: बढ़िया
0: 20 से 25% बढ़ने को इथे रहला उसे। तो ऐसे में किसान भाई लोगों के चाहे कि अब बीज के उपचार जरूर करें ताकि जौन बा उमन जौन भी रोग लगत होकर उसे बचा हो सके।
1: पंच भाई अपनी बैठकी में जानकारी सुन ली और एक साथ सुनल जाए को भेंट वार्ता। धान में लगने वाले प्रमुख कीट व रोग ये पर जानकारी देते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह और उनसे बातचीत करल बाटन कृष्ण चंद। आई सुनी जा।
2: जे भी धान का फसल लगावेला ओकरे पीछे ही मंशा रहला कि धान के फसल से बढ़िया उत्पादन मिले। लेकिन धान के फसल में कई गो कीड़ा के प्रकोप हो जाला, कई गो बीमारी के भी प्रकोप देखे के मिलेला, जौना के वजह से जौन अपेक्षा रहला वह अनुसार उत्पादन नहीं मिल पावला। धान के फसल में प्रमुख रूप से कौन कौन कीड़ा लगेला, कौन कौन रोग लगेला, आज यही विषय पर जानकारी देव खातिन अपने बैठकी में आयल बाटे डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र बसली जनपद महाराजगंज में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके हमरे यह कार्यक्रम में स्वागत बा।
3: नमस्कार।
2: सबसे पहले हम आपसे ये जानल चाहब कि धान के फसल में मुख्य रूप से कोने कोने कीड़ा का प्रकोप हो सकेला।
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। धान चूंकि खरीफ की मुख्य फसल है, इसमें रोग बीमारी कीड़े बहुत आते हैं।
2: जी
3: जो कीड़े की बात है, इसमें कीड़े में गंधी बाग, सैनिक कीट, बाली जो काट देता है, पत्ती लपेट कीट जो पत्तियों में लपेट करके उनको उनका हरापन खा जाता है, इसी क्रम में फुदका। फुदका जो है, तीन तरह के फुदके होते हैं, हरा फुदका, भूरा फुदका और सफेद फुदका।
2: डॉक्टर साहब, हम आपसे बीच में जानल चाहब, आप पत्ती लपेटे का चर्चा के लिए हैं।
3: हाँ।
2: एक पंच भाई कैसे पहचानी है कि पत्ती लपेटे का प्रकोप हो गया बा?
3: यह है कीड़ा, चूंकि यह कीड़ा पीले हरे रंग का शरीर का और गहरे भूरे सिर वाला 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है और इसकी हानिकारक अवस्था जो होती है वो सुंडी है। यह पत्तियों के दोनों किनारों को सटा देगा अपने जाले से और उसमें नाली बना देता है और नाली बनाने के बाद उसका जो हरा पदार्थ है वह उसको खा जाता है। चूंकि हरा पदार्थ पौधों में पोषक तत्व संग्रहित करने का काम करता है, जब हरा पर्ण नहीं रहेगा तो वह पौधा फल नहीं देगा और इसका जीवन काल 20 से 30 दिन तक होता है।
2: आप गंधी बग का चर्चा कर ली है।
3: हाँ।
2: एक एक कैसे पंच भाई पहचानी है और कौने अवस्था में एक लगले के संभावना ज्यादा रहेला?
3: गंधी बग की हानिकारक अवस्था शिशु और प्रौढ़ है। यह जब हमारी बालियों में दुग्धावस्था में बालियां रहती हैं तो यह इससे रस चूस लेते हैं और रस चूसने के बाद उसमें जो हमारे लोग कहते हैं पहिया पड़ गई, तो पहिया इसी गंधी बग कीड़े के कारण होती है। इसके निदान के लिए हमें जब फूल आने के बाद दानों में दुग्धावस्था हो, प्रति 2 से 3, आप जानते होंगे पौधे का एक हिल होता है
2: पूजा,
3: हाँ पूजा, वो 2 से 3 यदि आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें सुबह मीटिंग में मेलाथियान पाउडर या फैन रिमूवेबल पाउडर का 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बुरकाव कर देंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा।
2: एगो और चर्चा कर लें आप सैनिक कीड़ा के, तो ये तो जब बाली निकलेला तो वो समय लगेला, लेकिन पंच भाई अब अहने से जोन बा एक दिमाग में रख ले रहे हैं का जोन बा सावधानी बरतें पहले से ताकि एकर प्रकोप ना होके पावे।
3: बाली काटने वाला कीड़ा जो है इसको हम सैनिक कीट कहते हैं। इसकी इस डैमेजिंग स्टेज सूढ़िया है, मतलब इसका नुकसानदायक अवस्था। यह दिन में जो है यह आपके जमीन में दरारों में या कहीं कल्लों में छिपी रहेगी और शुरुआत अवस्था में यह पत्तियों को काटती है, परंतु धान में जब पकने की अवस्था आती है सायंकाल की अवस्था में यह आपके बालियों को काटकर गिरा देती है। ऐसी दशा में फसल का उत्पादन का नुकसान होता है। इस कीड़े का रंग भूरे पीले अथवा गहरे भूरे रंग का इसका सिर होता है, इसके साइड में लाइन बनी होगी दोनों साइड में, तो इसका ये कारण है। किसान भाई देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पत्ती लपेटक कीट के बारे में बताया, गंधी बग के बारे में बताया इनके, और तीसरा हमने बाली काटने वाले कीड़े जो सैनिक कीट कहते हैं इनके बारे में मैंने बताया, तो आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हम पोषक तत्वों का जो हम नाइट्रोजन यूरिया और पोटास और फास्फोरस देते हैं इसका यदि हम संतुलित मात्रा में प्रयोग करें तो ये पत्ती लपेटक कीट या आपके दूसरा जो मैंने आपको गंधी बग बताया इस पर हम काफी नियंत्रण कर लेंगे। इसके लिए हमें 2:1:1, मतलब यदि हम 120 kg यूरिया दे रहे हैं तो हमें 60 kg पोटास और

0: 60 kg हमको MOP देना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, तना बेधक कीड़ा का भी प्रकोप होखेला धाने में, ये कोना तरह से जनवा धाने का फसल के नुकसान पहुँचावेला, और अपन किसान भाई कैसे जाने, कैसे पहचाने कि तना बेधक कीड़ा है?
0: तना बेधक कीड़ा की जो हमारे नुकसान, देखिए हर कीड़े की एक जीवन चक्र होता है, उस जीवन चक्र में तना बेधक कीट जो है उसकी सूंड़ियां हमारे तनों के जमीन से थोड़ी ऊपर से वो डंक मारेंगी, और डंक मारने से वो पौधा हमारा उसके जो बीज का होगा आप उखाड़ेंगे तो आसानी से वो उखड़ जाएगा और उसमें बदबू आता है। यह कीड़ा, इसकी जो मादा होगी उसका पंख जो होगा पीले रंग का होगा, और इसकी सूंड़ियां हल्के पीले नारंगी शरीर वाली होती हैं। वानस्पतिक जो हमारे पौधे की अवस्था होती है उनमें इनका ज्यादा प्रकोप रहता है। इसके नियंत्रण के लिए हम जो बात करते हैं रासायनिक कीड़े, प्राकृतिक मित्र में ट्राइकोडर्मा जपोनिकम एक है जो 2.5 कार्ड प्रति हेक्टेयर, मतलब एक कार्ड में 20,000 अंडे होते हैं।
1: जी जी।
0: तो 50,000 अंडे एक हेक्टेयर में यदि हम जगह जगह पर लगा दें 30 दिन तक और एक हफ्ते पर उसको बदलते रहें, तो हमारा यह जो मित्र कीड़ा है इनका भोजन है और ये खा जाएगा।
1: ये कार्ड मिली कहाँ से?
0: कार्ड मिलने के लिए जैसे जैविक भवन है या जहाँ भी जैविक है या जहाँ भी लैब है, बायो कंट्रोल लैब, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाती है। और इसके लिए चाहिए तो यहाँ गोरखपुर में खजनी में जैविक भवन है, वहाँ भी मिल जाएगी, या नरेंद्र देव में आप जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा, या हमारे केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ भी जनपद स्तरीय कार्यालय है वहाँ पर भी आप संपर्क करेंगे तो वो उपलब्ध करवा देंगे।
1: डॉक्टर साहब, जो कार्ड अगर कुछ पैसा भी देव पड़ी कि फ्री में मिल जाएगी?
0: नहीं, जो यदि सरकारी संस्थान से आप जाते हैं लेते हैं तो इसको 1-2 कार्ड हम फ्री देते हैं।
1: अच्छा, आप फुदका का भी चर्चा करते हैं, कई तरह का फुदका लगाना है, एकर प्रबंधन कैसे कर जाए?
0: फुदका देखिए, फुदका 3 तरह का होता है। फुदका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान भाई आप देख रहे होंगे इसमें 3 तरह के फुदके होते हैं, एक हरा फुदका, दूसरा भूरा फुदका और तीसरा सफेद फुदका। हरा फुदका जो है वह टुंगरू वायरस का कैरियर है, यह इसलिए नुकसानदायक है। जितने भी फुदके हैं इनकी शिशु और प्रौढ़ दोनों हमारी पत्तियों से रस चूसते हैं। इसी तरह भूरा फुदका है, भूरा फुदका देखते होंगे कि वह ऊपर से पत्तियों को जला देगा और फसल बैठ जाती है, एक पैच में आप देखते होंगे बर्न हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हापर बर्न। यह भी हमारा जो कीड़ा है वो ग्रेसिस्टेंट वायरस को ट्रांसमिट करने में सहयोग करता है। इसी तरह सफेद फुदके हैं, ये भी पत्तियों में इनको गोफे में जाकर बैठ के इनको रस चूस के पौधों को सुखा देते हैं। इनके लिए प्रबंधन के लिए हमें खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा, 1.5 ml प्रति हेक्टेयर की दर से नीम आयल 10-10 दिन के अंतराल पे छिड़काव करें, उससे फायदा होगा। या कार्टेफ हाइड्राक्लोराइड एक आती है, कार्टेफ हाइड्राक्लोराइड का 4G का 18.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमको फायदा मिलता है, यह जमीन में मिलाना है। दूसरा, आपको एक आती है इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL वाली दवाई, वह 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर देंगे तो यह आपको ये जो जितने भी फुदके हैं इसके नियंत्रण होगा। और दूसरी चीज कि जब भी दवा डालें घोल वाली दवाई तो टेम्परेचर दिन का दोपहर का हो, धूप हो, उमस हो, ऐसा ना हो कि दवा डालने के 1 घंटे आधे घंटे बाद बारिश हो जाए, तो उसमें चूंकि यह धान का पत्ता चिकना होता है और यदि इसमें कुछ न कुछ घर में शैम्पू सरफ आप इसमें दवा के साथ मिला लेंगे तो यह पौधों को संपर्क में बनाएगा। और दूसरी चीज कि यह कम से कम 3 से 4 घंटे हमें खुला मौसम चाहिए, अन्यथा दवा डालने के बाद यदि 1 घंटे आधे घंटे में बारिश हो जाती है तो ऐसी दशा में आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते।
1: दर्शक अभिन, तो बात भेल कीड़ा के, कौन कौन जनबा कीड़ा लग सकल है।
0: जी,
1: अब बात कर जाए बीमारी के।
0: जी,
1: धान के फसल में जनबा अक्सर पंच भाई चर्चा कर लें भाई जनबा धाने के पतई पे जनबा धब्बा बन गया, बुझ नहीं पाओ का हवे, ये कोना वजह से हो जाला, यह कोनो बीमारी है?
0: देखिए, इसमें 2 तरह का आता है, एक तो होता है सफेदा रोग और दूसरा होता है खैरा रोग। सफेदा रोग नर्सरी में आता है और वह है आयरन तत्व की कमी से।
1: अच्छा,
0: इसके जो नई पत्तियां होंगी वो सफेद हो जाएंगी। इसके नियंत्रण के लिए 5 kg फेरस सल्फेट को 20 kg यूरिया के साथ मिलाकर या 2.5 kg बूझे चूने को 800 लीटर पानी में मिलाकर 2-3 छिड़काव एक हफ्ता के अंतराल पर करेंगे तो इससे आपको फायदा मिला।
1: आप कह लिए कि एकर प्रकोप नर्सरी में होखेला।
0: जी,
1: मान ले नर्सरी से पौधा उखड़ गल बा खेते में लग गए, ऐसा स्थिति में जो नहीं हो सकेला, अगर हो गए तो पंच भाई क्या करें?
0: ऐसे में फिर आप ये फेरस सल्फेट का जमीन में मिलाओ कराइए तो इससे फायदा होगा।
1: जी जी।
0: या इसका जो हमने बताया आपको घोल, इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो ठीक हो जाए, लेकिन जहाँ पर हम नर्सरी डालते हैं वहाँ पर इसका लक्षण, इसीलिए हम नर्सरी ऐसी जगह डालते हैं जहाँ हमारी वो जमीन अच्छी हो।
1: जी जी। हाँ। एक वजह से कहा जाला कि माटी का जांच करा लिया।
0: हाँ, माटी का जांच कर। दूसरा
1: जी जी।
0: खैर है कि यह जिंक की कमी से आती है और आप देखेंगे वह नर्सरी खड़ी फसल में जब आती है तो वह आप देखेंगे जैसे लगता है कि पान खाकर

0: थूक दिया गया हो पौधे पर, उस तरह लाल हल्के गुलाबी रंग के धब्बे पड़ते हैं, और धब्बे पड़ने पर वह आपको पूरे, फिर बाद में वो पूरा पूरा प्लाट ही खराब हो जाता है। इस कंडीशन में हमको 5 kg जिंक सल्फेट को 20 kg यूरिया के साथ या 2.5 kg बुझे चुने के साथ मिलाकर 800 से 900 लीटर पानी में मिला देंगे। आप इसका छिड़काव करेंगे 2-3 छिड़काव 1 हफ्ते से 10 दिन के अंतराल पर, तो आपको इसका फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब, अपने गांव में किसान भाई बाती के चर्चा कर ले, जहाँ चार लोग बैठने जाए, अनुभवी किसान भाई बात जान ला काला भी हमारे धाने के फसल में झोंका लग गई, ये झोंका का होला, एक का पहचान है?
0: झोंका देखिए, बीमारी जो फैलती है वह 2-3 कारणों से, एक तो कवक के वजह से, दूसरा बैक्टीरिया के वजह से, तीसरा वायरस के वजह से। कवक जनित बीमारी है झोंका। इसकी पहचान यह है कि पत्तियों पर आंख नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा और बीच वाला पोर्शन जैसे हमारी पुतलियां होती हैं ऐसे ही वो कालापन लेगा, और यह नाव के आकार का स्ट्रक्चर बनता है, और यह पत्तियों में मतलब टिप पर न होकर के पूरे पौधे पर दिखाई देगा। जब ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो ये बालियों डंठलों सब पर दिखाई देने लगता है। इसका उपचार सबसे बढ़िया हमें बीजोपचार है, और दूसरा खड़ी फसल में हम जिंक मैंगनीज कार्बामेट 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका 15-15 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे कर दें, तो इससे हमको झोंका बीमारी से निदान मिले।
1: डॉक्टर साहब, धाने के फसल में कौन कौन कीड़ा लगा लें, कौन कौन रोग लग सकल है, पंच भाई पहले से का सावधानी बरते ताकि धाने का फसल से बढ़िया उत्पादन मिले, आप यह बारे में इतना निम्न जानकारी देनी, एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंच भाई, अभी सुनल गेल भेंटवार्ता धान में लगने वाले प्रमुख कीट व रोग ये पर जानकारी देत रहना डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, इतना निम्न जानकारी देवे खातिर इनके दिया जाए धन्यवाद, और अपने बैठकी में मन मन साइन करे खातिर सुनल गेल लोकगीत।

0: हाँ भैया, मन मन साइन भइल, गीत सुनल गइल तो इनके दिहल जाए धन्यवाद। अब भैया देखें जौन बा, बहुत किसान भाई लोग बाड़ा ऐसा जौन पशुपालन भी कैले बाड़ा, तो पशुअन के जौन नवजात बच्चा होला उस सब के कैसे देखभाल कैल जा, ये विषय पे जानकारी लिया जा डॉक्टर सतीश कुमार सिंह से।
1: हैं तो सबसे पहले हमको कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि पशुशाला में गाय को जब आप बांधते हैं, सबको पता चलता है कि जब गाय बच्चा देने होती है तो काफी उछल कूद करती है, तकलीफ होती है, तो उसको पशुशाला के बीचों बीच बांधते हैं। कभी कभी आप क्या करते हैं कि उसको किनारे बांध देते हैं तो वो दीवारों से उसका सिर लड़ जा सकता है, तो आप उसको बीचों बीच बांधिए। अब जब गाय बच्चा देती है तो उसमें आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि उसको एक साक लगता है और उसकी श्वास नहीं चलती है, तो उस समय हम लोग क्या करें कि तुरंत, चूंकि चिकित्सक नहीं उपलब्ध होता है, तो पसलियों को बार बार प्रेशर करते हैं। पसलियों को बार बार प्रेशर करने से उसका जो श्वास है वो चलने लगता है। इसके पहले हमको ये करना चाहिए कि जब भी देखिए तो जैसे बच्चा जमीन पे आ जाए तो उसको उसके नाक को अच्छे तरीके से, चूंकि उसमें म्यूकस भरा होता है, तो नाक को साफ कर लीजिए, कान को साफ कर लीजिए, मुंह को साफ कर लीजिए। इस जब साफ कर लेंगे तो उसकी श्वास अपने से चलने लगती है, और कभी कभी जब नहीं चलती है तो उस केस में आपको पसलियों पे थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, तो फिर वो बच्चा श्वास लेने लगता है। अब बात आती है, कभी कभी ये देखा जाता है हमारे किसान भाई पशुपालक

भाई भ्रम में रहते हैं कि उनको खीस कब पिलाया जाए, कैसे पिलाया जाए। तो सबसे पहले जब वो बच्चे को साफ सफाई आप कर देते हैं अच्छे तरीके से, तो उसको कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी वो जितना जल्दी हो सके खीस पी ले, क्योंकि खीस में एक ऐसा तत्व होता है इम्यूनोग्लोबिन जो कि उसको जीवन भर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो ये खीस, जिसको आप गांव में फेनुस भी बोलते हैं, इसको पिलाना नितांत आवश्यक है। अब पशुपालक भाई ये प्रश्न करेंगे कि हमको खीस कितना पिलाना चाहिए, इसमें पिलाने में ये जितना वो पेट भर पी सके, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं, क्योंकि और इसको 12 घंटा बच्चा देने के 12 घंटा के पहले ही कोशिश करिए कि वो खीस पी ले। कभी कभी खेरी, जिसको आप प्लेसेंटा है, खेरी उसको बोलते हैं, खेरी नहीं गिरी रहती है, तो आप लोग बच्चे को 24 घंटे तक 36 घंटे तक फेनुस नहीं पिलाते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि वो जो प्राकृतिक तत्व है इम्यूनोग्लोबिन, उसका जो सदुपयोग उसके शरीर में होता रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी दशा में आप उसको तत्काल जितना जल्दी हो सके उसको जितनी इच्छा हो थोड़ी थोड़ी करके उसको पिलाते रहें। अब जो बच्चा है, नवजात बच्चा है, उसका आप देखते होंगे जो नाभि होती है वो लटकी रहती है, क्योंकि प्लेसेंटा उसी से जुड़ा होता है, टूट जाता है। तो इसको सबसे पहले हमको एक निर्जमित चाकू ले लेना चाहिए, चाहे ब्लेड ले लेना चाहिए, उसको हम निर्जमीकृत कर लेते हैं। एक धागा ले लीजिए, वो भी निर्जमीकृत होना चाहिए। इसको ऊपर से 2 इंच छोड़ करके खूब टाइट बांध देना चाहिए, और बांधने के बाद उसके नीचे से काट देना चाहिए। अब काटने के बाद हर मेडिकल स्टोर पे टिंक्चर आयोडीन मिलता है, टिंक्चर आयोडीन का पेंट उसको नाभि पे लगा देना चाहिए। ऐसे लगा देने से भविष्य में चल के आप देखते होंगे कि बहुत सारे चिड़िया हैं, चाहे कोई जानवर है, उसके नाभि को खींच लेता है और वहां पे फोड़ा हो जाता है, जिसको नावेल इल कहते हैं। तो ऐसी बीमारी से बचाने के लिए, जिसको नाभि का फोड़ा कहते हैं, तो बचने के लिए आप इसको काट देना चाहिए जैसा हमने बताया। कभी कभी लोग धागे से नहीं बांध देते, उसे काट देते हैं, तो उसमें पूरे शरीर की ब्लीडिंग होने की संभावना रहेगी। तो ऐसी दशा में आप कदापि इस तरह की बातें न करें, धागे से बांध करके ही करें। साथ ही जब बच्चा पीने लायक हो तो उसको आप ये देखिए कि उसके शरीर भार का 1/10 हिस्सा प्रतिदिन उसको दूध मिलना चाहिए, जो भी उसका वजन है उसका 1/10 हिस्सा। तो इस तरह से आप उसको प्रतिदिन पिलाते जाएंगे, और आगे चल करके 2 से 3 सप्ताह पे धीरे धीरे दूध की मात्रा को कम करते हैं, और इसकी मिल्क या करते हैं वसा निकाल करके, छाछ हो जिसको आप मंठा बोलते हैं, दही का घोल, इस सबको आप पिला सकते हैं रोटी डाल करके। और जब 3-4 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके मुलायम जो घासें होती हैं, हरी घासें होती हैं, इसको 100-200 ग्राम उसको देने का प्रयास करें, क्योंकि 6 महीने तक उसका धीरे धीरे जाते जाते र्यूमन का डेवलप हो जाता है, र्यूमन विकसित हो जाता है, फिर वो चारों का पाचन करने लगेगा। तो इस तरह से आप इसको आहार में बदलाव ले आकर के चारों पे उसको शिफ्ट करेंगे, और दाने की मात्रा भी 100 ग्राम से शुरू करके 200, 300, 400, 500 ग्राम तक दाने इसको, और दाने पचनी होना चाहिए। साथ ही यहाँ की जहां के रख रखाव की बात है, तो बच्चों को देखिए बाह्य परजीवी भी काफी प्रभावित करते हैं, तो ऐसी दशा में आपको पशुशाला को काफी सफाई रखना चाहिए, खासतौर से उसके दीवालों को आप चूना और गेरू फिनाइल इसका घोल बना करके उसको पुताई करते रहें, जिससे कि जो किलनियां हैं उनके अंडे बच्चे, मक्खियां, ये सब उसके पास नहीं आएंगी। और साथ ही छोटे बच्चों में एक परेशानी आती है, आप उसको व्हाइट स्कॉर बीमारी कहते हैं, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ज्यादा फेनुस पी लेने से, ज्यादा दूध पी लेने से वो बच्चा सफेद दस्त करता है, तो वो एक बीमारी होती है, एक बैक्टीरियल बीमारी होती है जीवाणुओं द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि वो दूध पीने से होता है, उसके जो गोबर होते हैं वो काफी सफेद कलर के हो जाते हैं। तो इसमें अगर इसी आपको दिखाई दे लक्षण, तो तत्काल अपने निकटवर्ती पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उनको दिखा करके उसकी दवा कराएं, क्योंकि इसकी दवा उपलब्ध है। दवा करने के बाद आपका जो पशु है, गाय का बच्चा है, भैंस का बच्चा है, वो सही हो सकता है। साथ ही जब इसके रोग बीमारियों से बचाव के लिए टीकों की बात आती है, तो टीकों के लिए जब 6 महीने के हो जाते हैं, तो आप अपने पशु चिकित्सालय से संपर्क करके उनके टीकाकरण की भी
जैसा

0: जो रिकमेंडेड होगा, जिस तरह के टीके होते हैं उनकी सलाह से ही वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन में खासतौर से एफएमडी का, उसके साथ ही साथ ब्रुसेलोसिस का टीका जो 7-8 माह पे लग जाता है, तो बस अपने नवजात बच्चों का जो जो जिस तरह से टीकाकरण करना है चिकित्सक से सलाह करके उसको उसी समय पे करवाते रहें। साथ ही इसको आप देखते होंगे कि अंतः परजीवी का प्रकोप ज्यादा बच्चों में होता है, तो अंतः परजीवियों में खास तौर से राउंड वर्म इनका ज्यादा प्रकोप होता है। तो पहले तो जब बच्चा पैदा होता है उसके 20 से 21 दिन बाद एक बार कृमिनाशक औषध, खासतौर से एल्बेंडाजोल जो भी मिल जाए, जिस भी कंपनी का आपको मिले उसको 30 ml तक उसको दिया जाता है। फिर इसको देने के बाद से फिर अपने चिकित्सक से सलाह लेकर के, क्योंकि जो कृमिनाशक औषध भी हम देते हैं तो इनको भी बदलते रहने की जरूरत होती है, और जब वो सेफ होती हैं उनके अनुसार तो वही उसको रिकमेंड किया जाता है। तो इसमें जब भी आप कृमिनाशक औषध दें, चाहे वाह परजीवी का कोई दवा लेते हैं, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह करके ही लें। तो आशा करते हैं कि इस तरह से यदि आप पशुओं का देखभाल, रख रखाव, प्रबंधन करेंगे तो वो बच्चा भविष्य में चल के आपको एक अच्छा उत्पादक पशु हो सकता है।
1: हाँ भैया, देखिए वार्ता सुनल गेल पशुओं के नवजात बच्चों की देखभाल जानकारी देते हैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, तो इनके दिया धन्यवाद। भैया देखिए अब जौन बा अब स्टूडियो का जौन घड़ी बा वो इशारा करतिया कि अपने बैठकी के समय पूरा होता तो चल जा। पंचो जय जवान जय किसान।

लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। निकेश कुमार बताते हैं कि इनकी पत्नी प्रीति दिनांक 11/6/2026 से लापता है। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम बसडीला अमवा, थाना श्यामदोरुमा, जिला महाराजगंज। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7309247646। शेषनाथ साहनी बताते हैं कि उनकी पुत्री मनीषा दिनांक 10/6/2026 की शाम 2 बजे से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम कतरारी, पोस्ट पिपरपाती, थाना श्यामदेवरमा, जिला महाराजगंज। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8840727470।

शिवसागर बताते हैं कि इनकी पत्नी चंदा दिनांक 2/6/2026 से लापता है। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम सोहरावना, पोस्ट तरकुलवा तिवारी, थाना भी।

टौली जनपद महाराजगंज, या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8127723212। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: आपकी पसंद, आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे रंजना श्रीवास्तव को। भोजपुरी बोली के कार्यक्रम देह समार में लीजिए सुनिए डॉक्टर कमलेश राय से काव्य पाठ।

दूसरका गीत घर परिवार में एगो मुखिया होला, ओ मुखिया का जिंदगी कैसन होले एकर सीधे सीधे चित्र हम प्रस्तुत कर रहल बानी।

तुलसी चौरा पर दियना के बार चले ली। आप सुन रहे थे डॉक्टर कमलेश राय से भोजपुरी बोली के कार्यक्रम देश हमार में ये कविता पाठ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक संगीत में लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत।

0: इसके साथ ही प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में प्रदेश के 12 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से उनके अभिभावकों के खाते में करीब 1320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण किया। इस अवसर पर 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU कर हर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
1: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
0: मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
0: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास

0: कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं और 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है, जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट को इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम शुरू किया गया है। श्री योगी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश भी सहभागी बन रहा है।
1: अब निवेश यहां भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने आज 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा और कमलेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पहुंची। इससे पहले रिमांड पर लिए गए आरोपी अविनाश शुक्ल से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर जांच टीम तीनों आरोपियों से बयानों का मिलान करवा रही है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से आज कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आगरा के पूर्व ARTO ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की। लखनऊ में उनके आवास पर 2 दिन चली छापेमारी में लगभग 1,62,00,000 रुपए कैश, करीब 20 करोड़ रुपए के जेवरात और 13 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1,246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने छात्रों से अपने ज्ञान, प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल विकसित भारत के निर्माण के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाषा विश्वविद्यालय में अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी कई भाषाओं के कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, जो यहां के विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों से जोड़ेंगे।
2: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
0: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

0: जिसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57,62,00,000 पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
1: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
0: राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य जनपदों में आज हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। पीलीभीत में कल रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स एवं 100.1 FM पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, कलाकार ऐसा होता है जो अपनी कला से साधारण क्षणों को भी असाधारण बना देता है। कुछ ऐसे ही प्रतिभा के धनी थे पार्श्व गायक के, जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में कई सदाबहार गीत गाए। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार में ऐसे महान गायक के गाए कुछ गीत।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते गुनगुनाते
1: सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सुन रहे हैं केके के गाए कुछ गीत।

कार्यक्रम एक ही कलाकार में अभी आप सुन रहे थे के गाए कुछ गीत। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कहानी। कहानीकार हैं प्रज्ञा श्रीवास्तव। कहानी का शीर्षक है दोषारोपण। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।

कि घर शहनाई बजी। उसी मोहल्ले के एक लड़के ने उसी दिन आत्महत्या कर ली। लोगों ने इसे आपस में जोड़ कर देखा, निश्चित ही दोनों के मध्य प्यार रहा होगा। लड़के और लड़की ने किसी बात पर, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, झगड़ा किया होगा। लड़के के मनाने की कोशिश की होगी और हो सकता है लड़की ना मानी हो, शायद पत्थर दिल हो, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सारी हमदर्दी मृतक के साथ थी लोगों की। आजकल बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन प्यार निभाना नहीं आता। जितने लोग उतनी बातें, क्योंकि एक ही मोहल्ले की बात थी, सो जो लोग रात में विवाह में शामिल हुए थे वही दिन में लड़के के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। बात एक मुंह से निकलते हुए दूसरे कानों तक पहुंची और धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई। कहाँ मिलते होंगे, पार्क में, रेस्तरा में, सिनेमा में, किसी बगीचे में, एकांत में, शहर से दूर जहाँ तन्हाई हो। ओ, तो बात इतनी दूर तक जा पहुँची थी। फिर तो बहुत कुछ घटा होगा दोनों के मध्य। लड़के ने आत्महत्या के पूर्व कोई पत्र भी तो नहीं छोड़ा था। शायद बेचारा लड़की पर कोई धब्बा नहीं लगने देना चाहता था। इसी को कहते हैं चाहत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो प्रेम की बात उड़ते उड़ते वहां भी पहुंची। पुलिस ने लव स्टोरी वाले एंगल से जांच पड़ताल शुरू की। लड़के के घर वालों ने पूछा। लड़के के घर वाले इस बात से अनभिज्ञ थे, लेकिन उन्होंने हंसकर नहीं किया इस बात से। हो सकता है लड़का लड़की दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन कॉलेज उनके अलग अलग थे। हो सकता है दोनों में पहले से प्यार हो। पुलिस ने विदाई के ऐन वक्त लड़की को थाने में तलब किया। लड़की के माता पिता ने एतराज जताते हुए कहा कि लड़की की विदाई है, ऐसे समय में थाने बुलाकर किसी लड़के की आत्महत्या के विषय में पूछकर आप लड़की का भावी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, आप लड़की के वजह से एक जवान लड़का दुनिया से विदा हो गया और आपको अपनी लड़की की विदाई की पड़ी है, पूछताछ जरूरी है। आप लोग कानूनी मामले में दखल ना दें तो अच्छा है। पुलिस को अपना काम करने दें। और विदाई के समय लड़की दुल्हन श्रृंगार में थाने में थी। पुलिस अधिकारी ने पूछा, आप इस लड़के से प्यार करती थी? नहीं। क्या लड़का आपसे प्यार करता था? मुझे पता नहीं। क्या आप लड़के को जानती थी? कैसे? 12वीं तक हम साथ में पढ़े हैं। क्या लड़के ने कभी आपसे प्रेम का इजहार किया था? नहीं। फिर लड़के ने आत्महत्या क्यों की? मुझे क्या पता। क्या ये एक तरफा प्यार हो सकता है? मुझे कभी नहीं लगा। जिस दिन आपकी शादी हुई उस दिन लड़के ने आत्महत्या की, इसका

पुलिस अधिकारी ने कहा, मैं किसी दबाव में आने वाला नहीं हूँ। जांच जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर लड़की को पुलिस थाने बुलाया जा सकता है। लड़की ने इतना तो स्वीकार किया कि वह लड़के को जानती थी, तभी आप ले जा सकते हैं लड़की को। दूल्हा पक्ष के लोग गुस्से में थे। दूल्हे के पिताजी ने कहा, हम ऐसी लड़की से अपने लड़के का विवाह कैसे कर सकते हैं जिस पर किसी लड़के की मौत का आरोप लगा हो, लेकिन शादी हो चुकी। लड़की पक्ष के लोगों ने कहा, मैं ऐसी शादी को नहीं मानता, फिलहाल ये विदाई नहीं हो सकती, लड़की के कदम शुभ नहीं है। लड़के के पिता ने गुस्से में कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लड़की के पिता ने कहा, मैं ऐसी लड़की को कैसे अपने घर की बहू बना सकता हूँ जिसका किसी लड़के की मौत से संबंध हो, ये झूठ है। लड़की के पिता ने चीख कर कहा, सच और झूठ का फैसला तो आने दीजिए, विदाई उसके बाद होगी। लड़के के पिता ने कहा और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। लड़के के घर में उदासी छा गई। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। लड़की की माँ ने गुस्से से कहा, लाखों रुपए शादी में खर्च किए, यदि ऐसा कुछ था तो तुम्हें पहले बताना था। लड़के ने आत्महत्या कर ली, हमारी बदनामी अलग हुई, जीवन भर का कलंक लगा दिया तुमने खुद पर। ऐसा कुछ नहीं है माँ, लड़की ने रोते हुए कहा, यदि ऐसा नहीं है तो थाने में क्यों कहा कि तुम उस लड़के को जानती हो, क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ा है, मैं ही नहीं और भी लोग उसे जानते होंगे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मैं वैसे ही जानती हूँ जैसे और लोग जानते हैं, लड़की ने रोते हुए कहा। लड़की के पिता मंदिर चले गए भगवान को अपना दुखड़ा सुनाने। लड़की की माँ ज्योतिषे के पास चली गई उपाय पूछने और लड़की अपने ही कमरे में कैद होकर रह गई। उसने बहुत सोचा कि क्या उसके लिए उसका सहपाठी आत्महत्या कर सकता है, कभी ऐसा लगा तो नहीं, फिर क्यों आत्महत्या की उसने, वो भी मेरी शादी वाले दिन, क्या वजह हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़का कॉलेज में किसी और लड़की से प्यार करता हो, प्यार टूटने का दर्द सहन न कर पाया हो, जो भी हो मेरा तो उससे कोई वास्ता रहा ही नहीं, खुद मर गया और मुझे मरण तुल्य स्थिति में छोड़ गया। कल अगर ये मसला हो भी गया तब भी उस पर जो कलंक लग गया वो जीवन भर के लिए, क्या मेरे ससुराल वाले कभी मुझे स्वीकार कर पाएंगे। यदि वह इस जंजाल से मुक्त हो भी गई तब भी उसकी बारात का लौटना लड़के पक्ष वालों का उसे मनहूस बताना, क्या उसका पति कभी उस पर उंगली नहीं उठाएगा। बेकार है मेरा जीवन, जब अपने माता पिता ही स्वीकार नहीं कर पा रहे कि उनकी बेटी निर्दोष है तो ससुराल वालों को कैसे समझा पाएगी, कैसे उनके दिल पर अपने तरफ से साफ कर पाएगी। पुलिस जांच जारी थी, एक दो बार उससे घर पर भी पूछताछ के लिए पुलिस आई। पूरा मोहल्ला अपने घर की खिड़कियों से झांकता नजर आया। आपस में खूब बातें हुई लड़की को लेकर, उसके चरित्र, उसके प्यार को लेकर। नई काल्पनिक कहानियां बना कर भी उछाली गईं एक दूसरे के कानों में। किसी ने कहा, हाँ मैंने एक बार दोनों को साथ में देखा है, शहर के बाहर बने मंदिर में देखा है। किसी ने कहा, मैंने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा, शहर के एक बड़े लाज में। किसी ने कहा, मैंने लड़के को अपने खून से लड़के की मांग भरते हुए देखा था। ये बातें लड़के पक्ष वालों तक पहुंची। लड़के पक्ष वाले इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये शादी खत्म कर देना ही ठीक होगा। जीवन भर का रोग कौन पालेगा, किस किस का मुंह बंद करेंगे, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जा सकती। और एक निर्णय के तहत दहेज का सारा सामान लड़के वालों ने लड़की के घर वापस लौटा दिया, यह कहकर कि यह शादी खत्म समझे। फिर भी आप जिद करेंगे तो हम पुलिस और कोर्ट का सहारा लेंगे। लड़की के पिता का रोना आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। लड़की की माँ ने पति का रोना देखकर कहा, आप क्यों मरेंगे, जिसके कारण ये सब हुआ वो तो बेशर्मो जैसी बैठी है, मरना तो उसे चाहिए, कलमुही सत्यानाशी पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई। लड़की ने जब अपने माता पिता के मुख से ऐसे बोल सुने तो उसे लगा कि इस सब की जिम्मेदारी वही है, उसका मर जाना ही बेहतर है, और लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली।

0: कुछ दिनों बाद पुलिस की जांच में स्थिति स्पष्ट हो गई। अब उसकी हमदर्दी लड़की के साथ थी। बेचारी बदकिस्मत मुफ्त में बदनाम हुई। अपने सम्मान के लिए मरना पड़ा उसे। सारा मोहल्ला मृतक लड़के से के परिवार और पुलिस पर थू थू करने लगा। टॉप इंजीनियरिंग संस्थान में मृतक को 2-4 प्रवेश परीक्षा में असफल हो चुका था। लड़का डिप्रेशन में था। उसकी कोचिंग पर परिवार के लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। उसकी संगी साथी परीक्षा पास करके अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पा चुके थे। लड़का तनाव में था और उसने अपनी कापी पर एक नोट लिखा था। वो पुलिस की गहरी छानबीन में मिल चुका था। मेरा टॉप इंजीनियरिंग संस्थान का सपना अधूरा रह गया। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। केस समाप्त हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि लड़की की मौत का कौन जिम्मेदार है?
1: हिंदी कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे प्रज्ञा श्रीवास्तव को। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अभिजीत को।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिजीत को।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
7: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech, Polytechnic, MBA, MCA, BBA, BCA, B Pharma, M Pharma और D Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई।
1: दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग

0: के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से, और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
7: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
6: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. The Prime Minister in a social media post said he is looking forward to talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex in a joint press statement at the temple premises. Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
8: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहाँ जरूर आएंगे। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं।
6: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The External Affairs Minister also called on Prime Minister of Kuwait, Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah. Dr. Jaishankar thanked him for support to the Indian

0: का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
3: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, ये जो पानी था वहाँ जो उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज़्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं इकट्ठा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज़्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफ़ी सारे बदलाव लेके आता है कि जहाँ कहीं बारिश होती है पहले वहाँ सूखा पड़ने लगता है और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहाँ के प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज़्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही हैं, तो ये ठीक है। मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज़्यादा होंगे। और इस सब को मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
2: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एल नीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एल नीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती

0: हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
1: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है, जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ धन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा। ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा, जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होता है।
0: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
0: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है, आईसीआर के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो

0: और पहले से तैयार ही है। पौने 2000 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो हैं, फ्लड रिलेटेड जो हैं वेराइटीज़ हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी। और एलिनो में ज़रूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज़ तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, पर इतना ज़्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ, तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफ़ी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिस सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफ़ी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है
1: जी,
0: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी,
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई एलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न UP जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती, आप देख लीजिए वहाँ पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहाँ पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज के इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं

0: उसमें उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके जरिए, या उस तरीके से उपलब्ध है क्या। और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, एआई की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है, हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी

0: से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन हैं, जो एआई के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है। वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
1: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूँगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, उसको वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते ना जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में, जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले। एक और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता हुआ अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम सोइंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइस देते हैं, वेन टू सो, वेन टू हार्वेस्ट, वेन टू इरीगेट, हाउ मच टू इरीगेट, वेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
0: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ

0: व्यावहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
1: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन हैं वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है। पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है चाहिए, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा। जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सेप्टेम्बर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
0: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज एवं 100.1 FM पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए वन सप्ताह महोत्सव पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्वर संकलन है मृत्युंजय कुमार उपाध्याय का।

0: माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान गोरखपुर में 55 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इस महाअभियान में 27 विभागों ने हिस्सा लिया। बड़ी जिम्मेदारी वन विभाग एवं ग्राम विकास विभाग की थी। लगभग 38 लाख पौधे इन्हीं दोनों विभागों को लगाने थे। वन महोत्सव को लेकर के अलग अलग संस्थानों ने अलग अलग कार्यक्रम किए। इस अवसर पर कई जगहों पर गोष्ठियों का आयोजन हुआ और कई जगह पर लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करते लोग बैनर लिए नजर आए। गोरखपुर के प्रभागीय वन अधिकारी शुभम सिंह ने बताया कि गोरखपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया गया। गोरखपुर वन प्रभाग की तरफ से सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई थी। साथ ही पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तरजीविता के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सायल वर्ग के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सायल की व्यवस्था, पौधारोपण स्थलों का विकास, पौध संरक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण कर ली गई थीं, उन्होंने बताया।
1: भारत में वर्ष 1950 से प्रतिवर्ष आयोजित किए जा रहे वन महोत्सव के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के अंतर्गत गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा 1 से 7 जुलाई 2026 तक जनपद के विभिन्न विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक परिसरों एवं वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, आम के पौधों का वितरण, गोष्ठी, ग्रीन चौपाल एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन किया गया। वन महोत्सव सप्ताह के दौरान आम बहार आपके द्वार अभियान के अंतर्गत आम के पौधों का वितरण किया गया तथा आम जन को फलदार एवं छायादार वृक्षों के महत्व से अवगत कराया गया। सप्ताह भर चले कार्यक्रम में लगभग 10,000 से अधिक पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया। इसी दौरान गोरखपुर की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप शीशम, अर्जुन, नीम, पीपल, पाकड़, बरगद, आंवला, अशोक, गुलमोहर जैसी प्रमुख प्रजातियों का रोपण एवं वितरण किया गया। इन कार्यक्रमों में लगभग 3,000 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की, जिसमें पुरुष, महिलाएं, छात्र छात्राएं, कई एनजीओस, एसएचजीस सम्मिलित हैं। कार्यक्रमों में माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। माननीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, माननीय श्रीमती संगीता यादव, माननीय श्री राधेश्याम सिंह, माननीय विधायक श्री राम चौहान, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह, माननीय विधायक श्री वीरेंद्र चौधरी तथा अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने इस वन महोत्सव से जुड़कर नागरिकों की हौसला अफजाई की। इस सप्ताह के दौरान अनेक शिक्षण संस्थाओं तथा विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों के दौरान आमजन को यह बताया गया कि वृक्षारोपण केवल एक दिवस का कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उन्हें सभी नागरिकों से लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने तथा अधिकाधिक लोगों को वृक्षारोपण से जोड़ने का आह्वान किया गया। गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा वन महोत्सव सप्ताह के दौरान आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की हरित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित की गई। वन विभाग ने नागरिकों से पौधारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण तथा आने वाले वृहद वृक्षारोपण 12 जुलाई को सभी नागरिकों द्वारा जनपद में पौधे लगाने और उसके संरक्षण का आग्रह किया गया।
0: वन महोत्सव की

0: देखी गई। इस अवसर पर एक विद्यालय में वृक्षारोपण करते हुए हमने एक शिक्षाविद से बात की। हमारे साथ हैं शिक्षाविद डॉक्टर नंदा पांडे, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं वन सप्ताह के अवसर पर?
1: बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी, आपने इस अमूल्य विषय पर हमारा विचार जानने का प्रयास किया है, इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वृक्ष हमारे अमूल्य निधि हैं, ये समस्त मानव जाति के लिए अत्यावश्यक हैं। सर्वविदित है कि पूरी मानवता को प्राण वायु प्रदान करने में हमारे ये वृक्ष सक्षम होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वातावरण में फैले कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, यह असंख्य पक्षियों, छोटे छोटे पशु पक्षियों के आश्रय स्थल भी होते हैं। आज इनके अभाव में तमाम पक्षियों की जातियां भी विलुप्त होती चली जा रही हैं। पर्यावरण हमारे जीवन में फल फूल हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। वृक्ष हमारे जीवन में फल फूल और यहाँ तक कि ईंधन भी प्रोवाइड करते हैं। अभी तो वृक्ष हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक कि हम वृक्षारोपण को करें। हमारे पूर्वजों ने भी ये बात कहा है और ये सर्वविदित भी है कि एक वृक्ष सौ पुत्र समाना, यह उक्ति चरितार्थ है हमारे समाज में।
0: वन सप्ताह महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव के इस विशेष रेडियो रिपोर्ट के लिए स्वर संकलन मृत्युंजय उपाध्याय, नवल का प्रस्तुति नूर मोहम्मद की।

आप सुन रहे थे वन सप्ताह महोत्सव पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्वर संकलन था मृत्युंजय कुमार उपाध्याय का। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

मन्ना डे व लता मंगेशकर के गाए इस गीत के बाद लीजिए सुनिए फिल्म असली नकली से लता मंगेशकर व मोहम्मद रफ़ी को।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राग शुद्ध नट। गायक हैं मल्लिकार्जुन मंसूर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन मंसूर से राग शुद्ध नट में गायन, आकाशवाणी का एक गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।

0: अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपये की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।